अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

सूरत दर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

0: अंदर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओली 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग Shine smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
2: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: तू है, वो है, जो भी है, हम यहाँ पे आ चुके हैं,
1: यही है,
0: यही है बात, यही है सच्चाई, इससे बड़ा सत्य कुछ और है नहीं। तो जी हाँ, अनगिनत दिनों के छुट्टियों के बाद हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं।
1: ऐसा लग रहा है फिर से नई शुरुआत कर दी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक नई शुरुआत जरूर है। इट्स अ न्यू डे, इट्स अ न्यू डॉन, इट्स अ न्यू डे, इट्स अ न्यू बिगिनिंग एंड आई एम फीलिंग गुड। आप सभी को एक सुपर डुपर गुड मॉर्निंग, ये है बिंदास मॉर्निंग्स ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूं आपकी कशिश,
0: और यहां पे हम दोनों ईद हॉलीडेज के बाद पहुंच चुके हैं। आप लोग भी देखिए, मैं जानता हूं गाड़ी में बैठते हुए आप भी सोच रहे होंगे कि यार जाना है आज,
1: यार आज क्यों जाना है, फिर से जाके सुनना पड़ेगा सबसे, ये दे दो टारगेट है
0: वो है फलाना ढिमकाना। देखिए जिंदगी हंकी डोरी चल रही थी जब छुट्टियां चल रही थी।
1: Yes.
0: अब देखिए ये तो ना सीजन की जैसे होता है, ठीक है, छुट्टियां जब होती है हमें लगता है कि हाँ बस हम एंजॉय करेंगे, बट इन छुट्टियों में मैंने एक चीज रियलाइज किया, सिर्फ रेस्ट लेने से ही हम जो है रिफ्रेश नहीं होते।
1: एग्जैक्टली मैं सो के थक गई थी यार, मतलब पहले के दो दिन मुझे जो है बहुत अच्छा लगा कि इतना सोऊंगी इतना सोऊंगी, उसके बाद मैं थक गई सो के, कि अब क्या करूं, रात में जाग रही हूं कि क्या करूं, नींद ही नहीं आ रही है,
0: मैं मुंह धो के थक गया। करना क्या भाई आगे क्या, मगर यहाँ पे इवेंट्स बहुत सारे हुए थे तो कुछ जगह पे हम गए थे, वैसा जरूर था, बट उसके अलावा अगर हम देखें तो मैंने ये रियलाइज किया कि सिर्फ रेस्ट करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, फिजिकल रेस्ट ही नहीं, और भी बहुत सारी चीजें इम्पोर्टेंट हैं। वो क्या क्या है उन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे,
1: क्या कुछ हमने किया उस पर भी बात करेंगे, क्या कुछ आपने किया ये भी जानेंगे। तो जल्दी जल्दी फोन उठाइए, मैसेज कीजिए 3311063 पर, और जरा मॉर्निंग वाला मोटिवेशन जिसकी जरूरत है अभी छुट्टी के बाद,
0: नहीं मिली हमें, हम इतना ऐसे सुबह उठने का मन नहीं किया था कि यार मैसेज तो नहीं आ गया क्या करेंगे हम, बट जल्दी जल्दी आप अपने मैसेजेस भेज दीजिए, मॉर्निंग मोटिवेशन वाले, गुड मॉर्निंग वाले प्यारे प्यारे कोड्स भेज दीजिए 3311063 पर तत्काल प्रभाव से, तुरंत से, पहले, अभी के अभी। और यहाँ पे आपके लिए हम बातें तो प्यारी प्यारी लेकर आए हैं, मगर गाने भी हम कुछ क्यूट क्यूट लेकर आए हैं।

0: देखिए उसका तो एक ही तरीका है। भाई इतना भी भावुक नहीं होते कि मरने लग गया, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं होता। ठीक है, हम भी किए हैं प्यार घर, ऐसे मरना
1: बहुत बार किए हैं। ठीक है, बहुत एक्सपीरियंस है सुदेव को। ज्यादा बात नहीं करना सुदेव के सामने।
0: जी, वन साइडेड लव में पीएचडी है अपनी तो। फिर यही बात बोलते हैं,
1: एक तरफा इश्क भी इश्क होता है।
0: इश्क होता है, ये जाकिर भाई ने बोला है। उसके बाद से तो मैंने फिर बहुत सारे इश्क करना शुरू कर दिए।
1: यस, रिलेशनशिप में थे एक तरफा।
0: बिल्कुल, आगे वाले को खबर नहीं है तो क्या हुआ, अपनी इन्वेस्टमेंट
1: है। दैट्स
0: योर प्रॉब्लम, नॉट माइन। यू नो, वो साउथ दिल्ली वाला वो आ गया। साउथ दिल्ली में तो मैं गया भी नहीं, बट फिर भी। बट एनीवे, यहाँ भी यही बात बोलते हुए हम आगे बढ़ते हैं और गाना प्ले करते हैं मातृभूमि मूवी का, और कहते हैं
1: जियो बिंदास।

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Mehmoon Ali Kapoor. Radio Olive, you're with us.
4: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network. Radio.

0: सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। Shine smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
2: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। यह है बिंदास मॉर्निंग्स ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेश
1: और मैं हूं आपकी कशिश।
0: और यहां पे हमारे पास भाई मैसेजेस आए, एक एक करके जरा देख लेते हैं। जुल्फी भाई का मैसेज आया है, एक फोटो भेजा है उन्होंने और उस फोटो में, एक मिनट है वो फोटो लोड ही हो रहा है वैसे। हाँ, उसमें लिखा है गुड मॉर्निंग, गुड थिंग्स कम टू दोस हु बिलीव एंड बेटर थिंग्स कम टू दोस हु आर पेशेंट एंड द बेस्ट थिंग्स कम टू दोस हु डोंट गिव अप।
1: Exactly, wow. और हम में तो तीनों ही चीजें हैं।
0: बिल्कुल, तो मतलब गुड बेटर बेस्ट सब अपने पास आया।
1: यस
0: यही तो चाहिए, और क्या चाहिए। और शशिकांत पाटिल जी का मैसेज आया, लिखा है डूइंग थिंग्स फ्रॉम द हार्ट इज नेवर अ लॉस, गुड मॉर्निंग करके। दिल से जो चीज अगर हम करते हैं तो वो कभी भी एक लॉस नहीं होती, उस प्रोबेबिलिटी में लॉस का कोई चांस नहीं है।
1: Exactly, कभी रिग्रेट भी नहीं होता जब हम दिल से करते हैं चीजें। एक बार दिमाग से करके कुछ गलत हो जाता है तो शिस, मेरा दिमाग कह रहा था।
0: हाँ। और नाजरी जी ने लिखा है गुड मॉर्निंग, वार्म एंड पॉजिटिव गुड मॉर्निंग विशेस करके। काफी क्यूट सा एक सिंपल मैसेज भेजा है। और सभ्यसाची भाई का मैसेज आया, उन्होंने लिखा है गुड मॉर्निंग सर एंड मैडम, थैंक यू सो मच। आपको भी एक बहुत ही बढ़िया प्यारा सा बिंदास सा मॉर्निंग हम विश करते हैं। और उसके साथ साथ थोड़ी ही देर में जब गानों के उस पार हम आएंगे,
1: yes.
0: तो सवाल लेकर आएंगे ये परखने के लिए, देखने के लिए, जानने के लिए कि आप पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं और कशिश से कितने तेज, क्या आप तैयार है? तैयार
1: अच्छा
0: है?
1: खासा लाइफ चल रही थी, वापस जीके खेलने आ गए हैं।
0: यस, जस्ट किडिंग से हम
1: वैसे ऐसा सच में नहीं लग रहा था ना, बॉडी की एक्सरसाइज हो रही थी चार दिन, ना ब्रेन की एक्सरसाइज हो रही थी। तो ठीक है, अगले सेगमेंट में ब्रेन की कर लेते हैं, उसके बाद बॉडी के बारे में बात कर लेंगे।
0: नहीं, मेरा तो चल रहा था एक्सरसाइज तो मैं तो कर रहा था।
1: पूरे दिन नहीं करते हैं, पूरे साल नहीं करते हैं, चार दिन छुट्टी मिल जाती है उसमें कर लेते हैं, क्योंकि कुछ करने को होता नहीं,
0: टाइम तो ही मिलता ना। पूरे साल का यही कर दिया हमने। और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं, तैयार हो जाइए, गानों के उस पार हम आएंगे एक बहुत ही प्यारा सवाल लेकर ब्लैक बोर्ड स्टोरीज में। स्टे ट्यून्ड, ये है रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम।
1: जियो बिंदास
2: ऑसम रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
3: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है ऑसम।

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. कतर का बिगेस्ट जिम ब्रांड अब आ रहा है और भी पावरफुल अंदाज में. फाल्कन फिटनेस हेल्थ क्लब प्रेजेंट्स इट्स सिक्स ब्रांच ग्रैंड इनॉग्रेशन एट बेनोम रान. इस ग्रैंड ओपनिंग को और भी स्पेशल बनाएंगे सेलिब्रिटी गेस्ट शेन निगम, अन्ना राजन, सिया सलीम और रोशन बशीर. ज्वाइन कीजिए इस फ्राइडे जून 5th शाम 6 बजे. फाल्कन फिटनेस बेनोम रान, वन फैमिली वन मिशन अनस्टॉपेबल.
1: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Shine smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making

0: अलका याग्निक और हेमा सरदेसाई की आवाज में हमने सुना अशोका मूवी का गाना। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूं आपकी कसूस।
0: स्टेशन क्लॉक में 6:32 हो रहे हैं और यहां पे वक्त आ चुका है ब्लैक बोर्ड स्टोरीज शुरू करने का।
2: रेडियो ऑलिव प्रेजेंट्स ब्लैक बोर्ड स्टोरीज।
0: और ब्लैकबोर्ड स्टोरीज में आज जो है हम काफी बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा क्यूट सा सवाल लेकर आए हैं।
1: ओहो, सिंपल सा है, क्यूट सा है, प्यारा सा, ये तो आंसर सबको पता है या नहीं पता उस पर डिपेंड करता है।
0: इसका आंसर सबको पता होगा। सवाल ये है, कतर का नेशनल एनिमल कौन सा है? कतर का नेशनल एनिमल कौन सा है आपको बताना है। आपको 3311063 पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं और बता सकते हैं इस सवाल का जवाब। और आप हमें टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, ऑडियो नोट भेज सकते हैं, मगर तत्काल प्रभाव से तुरंत से पहले अभी के अभी कर दीजिए मैसेज।
1: यस।
0: और दिखा दीजिए कि आप 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं और कशिश से कई मीलों तेज।
1: यस, एग्जैक्टली। और अगर आप इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे तो अगली बार हमें, यानी कल हमें ये सवाल पूछना पड़ेगा कि कतर का कैपिटल क्या है या कतर के फ्लैग में कौन से दो कलर्स हैं।
0: ऑप्शंस भी दे देंगे। नहीं, बट आप जल्दी जल्दी हमें मैसेज कर सकते हैं, बताइए हमें सवाल का जवाब क्या है। और यहाँ पे गाने भी हमने आपके लिए बहुत ही प्यारे प्यारे क्यूरेट कर रखे हैं।
3: yes.
0: और उसके साथ साथ आज के बाद बहुत ऑडेशियस हो गया बंदा।
1: Exactly.
0: आज के बाद तू मेरी रहना। अरे और भाई पूछ तो लो उससे।
1: ये गाना जब आया था ना उसके बाद से, उसके बाद जितनी भी शादियां हुई थी उस सीजन में सब में यही गाना चल रहा था। मतलब लोगों ने ऐसा कर दिया था कि हम शादी ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इस गाने पे रील बनानी है। लोग इतने मतलब उन लोगों को ऐसा लगना रहा था, लग गया था कि ओ माय गॉड दिस इज आवर वेडिंग सॉन्ग। और अभी भी मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोगों ने सेव करके रखा है कि अपनी शादी में तो इसी गाने पे रील बनेगी। देखो
0: भाई, मगर मैंने तो अपने लिए गाना डिसाइड कर रखा है, अगर शादी कभी करूंगा तो मैं तेरा यूज करूंगा। मैं तेरा। भाई अपना सॉर्टेड है, अपना फिक्स्ड है।
1: मैंने सोचा है वो ऊंची ऊंची दीवारों से गाना है ना एक।
0: कौन सा वाला?
1: अरे यार बाद में बताऊंगी, अब मैं गा के गा तो सकती नहीं हूँ मैं।
0: अरे ऐसे ही बता।
1: अरे वो सात कंगन लेते आना सारे बंधन लेके, अगर आप लोगों को ये गाना बताया तो बताओ सुदेव को, मैं जरा सुना के आती हूँ।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे फिलहाल हम पानी तरंग सुनते हैं आयुष्मान की आवाज में, विकी डोनर मूवी का गाना है। स्टे ट्यून्ड, यह रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम।
1: जी अविनाश।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Commercial Bank presents CB 2026 Million Rials Dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन or mega draw ticket.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Shine smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
2: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: इतनी बार बोल दिया है, अब सोचने का टाइम तो दो बेचारी को। तुम इतना बोल रहे हो कि आज के बाद रहना रहना रहना भाई, ऐसे थोड़ी ना होता है।
1: उसने बोल दिया तो हो गया, बोल दिया। उसको कोई फिक्र नहीं कि हाँ आ रहा है ना आ रहा है, मे भी आ रहा है, कल आ रहा है, नहीं आज के बाद तू मेरी रहना।
0: ये रिक्वेस्ट नहीं, ये कमांड है, ये ऑर्डर है कि रहना है भाई, पूछ
1: अब
0: नहीं
1: तो
0: रहे।
1: रहना ही पड़ेगा,
0: रहना है नहीं, एक्चुअली कहना है ऐसा है गाना, मैंने गलत गा दिया था, बट या वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूं आपकी कशिश।
0: और यहां पे थोड़ी देर पहले ब्लैकबोर्ड स्टोरीज में एक बहुत ही सिंपल सा सवाल हमने पूछा था, सिंपल से सवाल का एक बहुत ही क्यूट सा जवाब हमारे पास आया, तो चलिए सुन के देखते हैं।
2: गुड मॉर्निंग, दिस इज ध्रुव हियर एंड द आंसर ऑफ टुडेस क्वेश्चन इज अरेबियन ओरिक्स।
0: ओके, ध्रुव भाई ने बोला है अरेबियन ओरिक्स, उसके साथ साथ मुझे सृष्टि का मैसेज भी आया है, लिखा है गुड मॉर्निंग दिस इज सृष्टि हियर एंड द आंसर टू टुडेस क्वेश्चन इज अरेबियन ओरिक्स। उसके साथ साथ सोना जी का मैसेज आया है, उन्होंने भी लिखा है ओरिक्स, उन्होंने लिखा है गुड मॉर्निंग सुदेव भाई एंड कशिश, आंसर इज ओरिक्स। और अबरार भाई ने एक फोटो भेजा है, और सच बताएं तो आप सभी का जवाब जो है बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया तरीके से सही है। बहुत बढ़िया,
1: क्या बात है? सब मुझसे ज्यादा स्मार्ट है।
0: वाह वाह। मैं जब भी ऐसे वाह करता हूँ मुझे एक चीज याद आती है, पता है? हाँ। वो है आजकल रियलिटी शोज में, स्पेशली म्यूजिक रियलिटी शोज में, बंदा वहाँ पे गाना गा रहे हैं,
1: एक बार करके देखते हैं आप, गाओ ना गाओ ना।
0: अच्छा ठीक है, मैं कहता हूँ ठीक है, कोई गाना बताओ, कोई एक अच्छा सा प्यारा सा एक क्यूट सा गाना। यहाँ पे हम अभी एक रियलिटी
1: शो का
0: रिक्रिएट करे, सीन रिक्रिएट करे, कोई अच्छा गाना बताओ। अच्छा ठीक है, मैं गाता हूँ ठीक है।
1: ओके, सो मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ। सो पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर सुदे
0: कफा सुदा।
1: वाह क्या गाया।
0: अच्छा ठीक है, कफ़ उदास है यारों
1: सबा।
0: नहीं, आप अपना ही कर लो सर, आप ही ये होता है आजकल। ये होता है, बंदा वहां चैन से गाना गाने की कोशिश कर रहा है, भाई वो प्रेशर में है कि भाई जीतूंगा नहीं जीतूंगा, पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्या होगा, अगले राउंड में जाऊंगा नहीं जाऊंगा, आज निकलना पड़ेगा, ये सब वो सोच के वहाँ गा रहा है।
1: ये सब वहाँ पे वो सोच के गा रहा है, ठीक है चलो कोई बात नहीं, ये सब हो सकता है कि उसको उतना सुनाई ना दे रहा हो, क्योंकि हाँ। वो तो दूर है स्टेज पे, हाँ। हमें माइक्स पे सुनाई दे रहा है, लेकिन दिक्कत तब होती है जब हमें उस सिंगर का वो वाला वर्जन यूट्यूब पे सुनना होता है, या हमें वो वाला वर्जन अच्छा लग रहा होता है, एंड बीच में ये जजेस का वाह वाह हो
0: सुपर सर। मतलब मेरा तो ये कहना है कि आप एंजॉय कीजिए गाने को, मन में एंजॉय कीजिए, चिल्ला चिल्ला के कर देते ना तो
1: ऐसा। आई थिंक तब हुआ था ऋतु रिबा का एक गाना जो था, एक वर्जन था जो बहुत अच्छा लगा था मुझे, एंड उसका जो है मुझे यूट्यूब पे जाके सुनना था, एंड उसमें आधी बार आवाज जो है नेह कर आ रही थी सिर्फ। अरे यार
0: ये होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए बट आजकल होता है। आपके इसके बारे में जो ओपिनियन है आप जरा बताइएगा हमें, अपने ओपिनियंस को रजिस्टर कीजिए यहाँ पे 3311063 पर। कुछ बदलने नहीं वाला मगर फिर भी
1: एक बस मुहिम चलाते हैं।
0: हाँ चलिए, कि चुपचाप बैठ के गाना सुनो, हैशटैग चुपचाप बैठ के गाना सुनो। आप लोग कर दीजिए मैसेज, बताइए हमें आपको क्या लगता है। और यहाँ पे ख्वाब देखूं गाना हम प्ले करते हैं अरिजीत सिंह और तरन्नुम मलिक की आवाज में। स्टे ट्यून्ड, रेडियो ऑलवेज 106.3 FM।
1: जी बिंदास।

0: आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। Shine smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
2: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: अच्छा जिगर ठंडा सुना मगर आपने कभी जिगर डंडा पिया है?
1: जिगर ठंडा क्या होता है?
0: जिगर ठंडा नहीं, जिगर डंडा करके चीज है, जिगर डंडा।
1: नहीं पता।
0: ओके, जिगर डंडा एक बहुत ही बढ़िया चीज है जो तमिलनाडु से है।
1: अच्छा।
0: या फिर जो साउथ में स्पेशली केरला तमिलनाडु वहां से उन्होंने सुना होगा, क्योंकि जिगर डंडा एक ड्रिंक है बेसिकली।
1: अच्छा।
0: और बहुत ही फेमस ड्रिंक है, बहुत ही प्यारा ड्रिंक है, मीठा होता है, ठंडा होता है, मजा आ जाता है पी के।
1: मतलब गर्मी वाला ड्रिंक है, समर में पिया जा सकता है,
0: बहुत मजा आ जाएगा।
1: अभी क्या जरूरत भी लग रही है थोड़ी।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है, ये है बिंदास मॉर्निंग्स ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव।
1: और मैं हूं आपकी कशिश।
0: और यहाँ पे चलिए भाई मौसम के बारे में बात करते हैं। और अभी टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे आज का लोएस्ट टेम्परेचर बहुत ही सरप्राइजिंगली 31 डिग्री सेल्सियस जाएगा। यस। और हाइएस्ट टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस जाएगा। और हवा जो है 17 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बह रही है। और मेरे मन में एक रिक्वेस्ट है कि ठंडी हवा बहले यार, बस
1: यार सच में। कल ना मैं अपनी मम्मा से वीडियो कॉल करने के लिए ऐसे जो हमारा विला है उसे थोड़ा सा बाहर मैंने कदम रख लिया कि यार बाल वाल गीले, काम करती हूँ कि थोड़ा बाहर जाके बात कर लेती हूँ। बाहर जाके वीडियो कॉल पे बात कर लेती हूँ। मैं लिटरली सिर्फ 2 मिनट बाहर खड़ी थी और मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी, मैंने मम को बोला मम मैं आपको ऑडियो कॉल लगा रही हूँ अंदर जाके, क्योंकि बाहर मतलब इतनी गरम गरम हवा लपट जैसे चल रही है, ऐसा लग रहा है कोई जोर से चौटा मार रहा है गर्म गर्म।
0: हाँ।
1: किसी ने मेरे मतलब स्ट्रेटनर जो होता है ना,
0: हाँ।
1: जब वो आपके गाल पे गलती से बाल स्ट्रेट करते करते टच हो जाता है,
0: हाँ।
1: तो जैसे चटका लगता है, बिल्कुल वैसा ही लग रहा था।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: अब तो मैं इस ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि कितनी गर्मी है।
0: अब जिन्हें पता है उन्हें पता है,
1: सब सेम जगह ही रह रहे हैं, सबको पता है। अब वो जो फीलिंग है वो जब आप अपनी गाड़ी खोलते हो और अंदर बैठते हो और फिर बिल्कुल आपके मतलब जैसा आपने अपनी सुबह सुबह सब्जी गर्म करी है,
0: हाँ।
1: उसको और आपको सेम फीलिंग आ रही है माइक्रोवेव में।
0: भाई
1: बिल्कुल वही फीलिंग है। देखिए
0: सब्जी भी सोच रहा होगा अब पता चला,
1: अब पता चला मुझे कैसा लगता है। बोलते नहीं नहीं 30 सेकंड और रुक दो। अब बैठ, अब जाओ 30 मिनट और बैठ के जाओ ऑफिस तक। ऐसे
0: तो हम यही बोलेंगे कि अपना ख्याल रखिए। देखिए गर्मी बढ़ती जा रही है दिन पर दिन, गर्मी बढ़ेगी, ऑब्वियसली गर्मी बढ़ेगी क्योंकि समर सीजन है। और उसके साथ साथ हाइड्रेटेड रहिएगा और अपने कार को कोशिश करिए कि आप छांव में ही पार्क करें। अगर नहीं मिलता तो कुछ ऐसे एक्सेसरीज आप रखें जिससे जो शील्ड्स होते हैं जो विंडशील्ड में लगाते हैं और हम अपने विंडोज में भी लगा सकते हैं जिससे गर्मी अंदर ना आए। उसके साथ साथ स्टीयरिंग व्हील में भी आप जो है एक गार्ड लगा सकते हैं ताकि गरम गरम ना लगे आपको,
1: गरम गरम ना लगे। और कई बार क्या होता है कि जब आप सोचते हो कि ठीक है थोड़ी दूर ही तो जाना है,
0: हाँ।
1: कि सब्जी लेने ही तो जा रहे हैं, कोई बात नहीं बैठ जाते हैं ऐसे, उसके भी काफी हेल्थ पे जो है असर पड़ता है। तो आप जो है पहले थोड़ा सा 1 मिनट पहले एसी जो है ऑन करके छोड़ दीजिए, उसके बाद कार में बैठिए तो थोड़ा बेटर रहेगा।
0: और यही बात बोलते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और प्ले करते हैं भूत बंगला मूवी का गाना। Stay tuned, ये है रेडियो ऑलिव 106.3 FM।
1: जी बिंदास।

0: सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। Shine smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
2: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: सावन में लग गई आग, ऐसा ही बहुत पुराना गाना भी है, किशोरदा का गाया हुआ।
1: ये वही गाना है, उसी का जो है रिक्रिएशन है, जो मीका सिंह ने किया था सनी वेज गिडनी मूवी में।
0: जी
1: और उसमें मस्त डांस किया गया है नेहा कक्कड़ जी के द्वारा। अच्छा लगा ये गाना सुन के, लेकिन वो वाइब नहीं है जो बचपन में आती थी। खैर, मैं बस ये उम्मीद कर सकती हूँ कि इस आग में थोड़ा सा सावन गिर जाए
0: जी,
1: तो थोड़ी राहत मिल जाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: क्योंकि
0: मगर मैं कोई और ही गाना तो सोच रहा था।
1: कौन सा था वो गाना?
0: चिंगारी
1: कोई भड़के, वाह वाह वाह वाह वाह।
0: नहीं, वो खत्म हो गया रियलिटी शो। तो सावन उसे बुझाए।
1: अच्छा,
0: सावन जो अगन लगा है उसे कौन बुझाए?
1: ओह माय गॉड,
0: कौन बुझाएगा? ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है जो उस टाइम से चल रही है।
1: वही बुझाएगा जो आग लगाएगा।
0: क्या बात कर दी आपने,
1: अपना अपना काम देखिए, खुद करना चाहिए, समेटना चाहिए। जो कॉफी का मग जो है आपने चाय पी के रखा है, कॉफी चाय पी के टेबल पे, खुद ही उठाएंगे ना आप।
0: और नहीं तो क्या, कोई आएगा उसके लिए? बॉस आएंगे हमारे? क्यों
1: आएंगे?
0: वही हम ही आएंगे।
1: हाँ,
0: और ये याद रखना कि अपना कॉफी का मग हमें उठा। आप सोच रहे होगे कि कुछ काम की, नहीं कोई काम की बात नहीं कर रहे हैं हम, कोई काम की बात नहीं कर रहे हैं हम, बस यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं, मजे काट रहे हैं। वेलकम बैक, ये बिंदास मॉर्निंग्स ओनली ऑन रेडियो ऑलवे 106.3 एफएम। मैं हूँ आपका मेजबान सुदेव,
1: और मैं हूँ आपकी कशिश।
0: देखिए, कभी कभी लाइफ में हम सोचते हैं कि भाई हर चीज में ना कुछ एक मीनिंग होना चाहिए। नहीं, लाइफ में कभी कभी कुछ ऐसी चीजें हो जाती
1: है, सोचते हैं
0: नहीं होता है। अभी मेरी बात हो रही थी मेरे फ्रेंड से कल, तो वो बता रही थी कि मेरा गिटार उसके पास था। तो अब ये बहुत ही स्पेशल बात है, ठीक है, मेरा पहला गिटार जो मुझे दिलाया था जब मैं कॉलेज में था, तो मेरे से वो लेके गई थी, वो ऐसे कुछ वीडियो से शूट करना था। उसके बाद फिर मैं उससे मिला नहीं बहुत टाइम से, उसके बाद मेरा यहाँ आना हो गया। तो 3 साल से मेरा गिटार जो है उसके पास ही रखा है। तो कल मैं मैसेज करा था, उसने बोला कि यार एक गुड न्यूज है एक बैड न्यूज है। मैंने बोला गुड न्यूज बता पहले क्या है। तो बोली कि उसने, उसका जो जॉब था पहले, वो 6 साल से एक कंपनी में काम कर रही थी, उसने वो छोड़ दिया, उसे नया ऑफर मिला, शी इज गोइंग समवेयर एल्स, एक डिफरेंट जगह जा रही है। वो अच्छा लगा मुझे, क्योंकि वो एक अपने कंफर्ट जोन से निकल रही है, और वो भी कह रही थी कि मैं बहुत ही मोनोटोनस तरीके से जिंदगी में वो हो चुकी थी और मैं खुश नहीं थी। सो मैंने हैप्पीनेस सीख किया, ऐसे करके उसने बोला। मैंने बहुत अच्छी बात है, उसने बोला एक बैड न्यूज है। मैंने हाँ बताओ क्या, गिटार टूट गया। इरिपेरेबल डैमेज है, इरिपेरेबल डैमेज। तो मैंने उससे पूछा क्या हुआ, उसने बोला कि यार बात यह है कि कुछ किया ही नहीं, मतलब ना गिर के टूटा, ना इधर कुछ हुआ, ना उसके ऊपर कुछ गिरा। मैं स्ट्रिंग टाइट कर रही थी तो उसका ब्रिज निकल के आ गया। और वो डैमेज रिपेयर ही नहीं हो सकता, मैंने पूछा जाके। तो उसने, उन्होंने बोला कि इससे अच्छा आप नया गिटार ही ले लो। तो फिर उसने बोला आई एम रियली सॉरी बट मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो मैं भी बहुत ऐसे वो हो गया था, बट मैंने बोला कोई बात नहीं, इसमें तेरी गलती है नहीं। तो उसने बोला इसलिए मुझे ज्यादा बुरा लग रहा है कि मेरी गलती नहीं है, मैंने कुछ किया नहीं है, फिर भी ऐसा हो रहा है। तो मैं यही आपको बताना चाहूंगा कि कई दफा ऐसा होता है कि हम लाइफ में बहुत कुछ चीजें सही करते हैं, सब सही करते हैं, उसके बावजूद भी अगर चीजें हमारे ऊपर नहीं होती या फिर हमारे फेवर में नहीं आती, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, इसमें हमारा कोई क्या कहते हैं मिस्टेक नहीं है। समटाइम्स हम जो चीज चाहते हैं जरूरी नहीं है वो हमें मिले या फिर हमारे पास आए।
1: एग्जैक्टली,
0: तो लाइफ इज वेरी वियर्ड, लाइफ समटाइम्स डज नॉट मेक एनी सेंस, एंड सिमिलरली We should not strive to make sense of everything that is around
1: exactly. us. कवि का तात्पर्य ये है, क्यों निकालना है कवि का तात्पर्य? कवि ने जो है खुद रैंडमली बैठे बैठे स्क्रिबल करते करते कुछ भी लिख दिया,
0: कह दिया है
1: क्यों तात्पर्य निकालना? वैसे क्या कॉफी के मग से हम यहाँ पर आए हैं, बहुत ही मजा आ गया।
0: आप सोच रहे होंगे ना कि ये ऐसी बातें भी कर लेते हैं, अरे भाई ये स्पेक्ट्रम पता नहीं आपको हमारा, अलग ही रेंज में खेलते हैं हम।
1: हमें खुद नहीं पता कि हम अगले मोमेंट जो है वो अच्छी बात करने वाले या बुरी बात करने वाले, लेकिन हम बात करने वाले हैं, बस हमें इतना पता है
0: ये तो हम कर देंगे, बट क्या आने वाला अगला ये किसी को नहीं पता। और मेरे घर वालों को तो बिल्कुल आइडिया नहीं रहता मेरे मुंह से क्या निकल, मैं बता रहा हूँ, माँ के से बता रहा हूँ। एक बार मेरे एक मम्मी पापा ने मुझे बिठा के बोला कि सुन तू ना मुंह बंद रखा कर। मैंने बोला क्यों?
1: मुझे बोला
0: कि तेरा कुछ भरोसा नहीं, तू क्या बोल देता है?
1: थोड़ा कम बोलना वहां जाके, ठीक है, कुछ भी बोल दूंगी।
0: अभी तो आप लोग काफी रिफाइंड वर्जन देख रहे हैं, बट कतई मुंहफट एक वर्जन था मेरा स्कूल में पढ़ते वक्त, इतना मुंहफट। एक बार मैं बैठा था मौसी के घर में, मौसी ने बोला और चाहिए खाना, मैंने बोला नहीं चाहिए, वो फिर पूछी, मैंने बोला नहीं चाहिए, तीसरी बार पूछा, मैंने बोला एक बार बोल दिया ना नहीं चाहिए, बार बार क्या पूछ रहा
1: है? अच्छा वो ये नहीं बोला कि अच्छा नहीं है नहीं खाना।
0: तो अब उस कॉन्वर्सेशन का टाइमिंग देखो, मम्मी पापा मौसा मौसी मेरा कजिन पांचों लोग बैठ के घेर के मुझे बता रहे कि तू थोड़ा ढंग से बात किया कर, ये किया कर, वो किया कर,
1: और अगले मोमेंट, ठीक है,
0: और अगले मोमेंट में ये तो बोल, यही बोल रहे थे यही बोल रहे थे, और मेरी आंखें चुट के बैठे, बोला एक बात बताओ मुझे, मैंने एक बार बोला मुझे नहीं चाहिए, दो बार बोला मैंने नहीं
1: चाहिए,
0: चाहिए तो मैं ले लूंगा ना, मतलब अगर मुझे चाहिए मैं ले लूंगा, मेरी मौसी का ही घर है, किसी और का घर थोड़ा ना मुझे आगे करने के लिए, चाहिए तो मैं ले लूंगा, तो जब तक मुझे नहीं चाहिए आप लोग मुझसे पूछा मत करो तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बोला
1: देखो ये तो रीजन नहीं था, आप जो है थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गए थे सबकी बातों से, इसलिए आपने ऐसा किया,
0: नहीं नहीं एक्चुअली रीजन यही था, मैं बातों से फ्रस्ट्रेट, ध्यान भी नहीं दे रहा था उनकी बातों, मुझे फर्क भी नहीं पड़ रहा था उस टाइम पे, मैं सोच रहा हूँ हाँ बोलने तो कोई बात नहीं, क्या चल रहा है, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ,
1: नमक बढ़िया है, अच्छा लग रहा है,
0: चिकन क्या बढ़िया पका हुआ है, कुछ भी कहो, ताने मौसी के ताने और मौसी की चिकन
1: दोनों बहुत बढ़िया है,
0: दोनों बहुत बढ़िया, अलग लेवल, अव्वल दर्जा,
1: नमक बराबर छिड़कती है मौसी, चाहे खाने में हो चाहे जख्मों पे हो
0: बट जो भी हो उन्हें मैं बहुत पसंद हूँ, बताए क्यों, क्योंकि मैं कभी उल्टा जवाब नहीं देता, मैंने एक ही बार दिया उल्टा जवाब, उसी टाइम पे था,
1: ठीक है इस कोई बात नहीं, चलिए
0: यस,
1: ये हम तो बातों तो बह ही जाते हैं,
0: वही जाते हैं, चलिए अब समेट लेते हैं, गाना प्ले करते हैं और कहते हैं
1: जियो बिंदास,
2: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है, जबरदस्त है।

0: Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
1: कतर का बिगेस्ट जिम ब्रांड अब आ रहा है और भी पावरफुल अंदाज में फाल्कन फिटनेस हेल्थ क्लब प्रेजेंट्स इट्स 6th ब्रांच ग्रैंड इनॉग्रेशन एट बेनोम रन इस ग्रैंड ओपनिंग को और भी स्पेशल बनाएंगे सेलिब्रिटी गेस्ट शेन निगम अन्ना राजन सी आर सलीम और रोशन बशीर ज्वाइन कीजिए इस फ्राइडे जून 5th शाम 6 बजे फाल्कन फिटनेस बेनोम रन वन फैमिली वन मिशन अनस्टॉपेबल
2: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Shine smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
3: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो बिंदास मॉर्निंग्स ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूं आपकी कशिश।
0: और यहां पे वक्त हो चुका है फिट है तो हिट है का।
2: फिट है तो हिट है।
0: Yes, और यहाँ पे फिट है तो हिट है में हम बात करेंगे क्रॉनिक स्ट्रेस डाइजेशन को कैसे इफेक्ट करता है, इन सब चीजों के बारे में। तो यूजुअली हमने सुना होगा कि दिल और दिमाग के बीच में जो है तालमेल होना चाहिए, मगर मैं कहता हूँ कि ये तालमेल बनाने से पहले पेट और दिमाग के बीच में एक तालमेल बिठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दोनों इंटरडिपेंडेंट है।
1: अच्छा, हाँ।
0: अगर हमारा गट हैप्पी है तो हम हैप्पी है, गट में प्रॉब्लम है तो हम में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। रिसर्च ये दिखाती है कि ब्रेन और गट के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, इसे गट ब्रेन एक्सिस कहा जाता है। जब क्रॉनिक स्ट्रेस में हम रहते हैं तो बॉडी बार बार फाइट और फ्लाइट मोड में एक्टिवेट रहती है, एक्टिव रहती है। अब इससे क्या होता है, बॉडी में जो सर्वाइवल को जो प्रायोरिटी होता है ना, वो आगे बढ़ जाता है। तो डाइजेशन कम हो जाता है, डाइजेशन में जो एनर्जी लगती है वो कम हो जाता है। इसका इफेक्ट क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स का प्रोडक्शन कम हो सकता है, गट मूवमेंट स्लो या फास्ट हो सकता है, स्टमक और इंटेस्टाइन ज्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं। इसी वजह से स्ट्रेस के दौरान ही कई लोग ब्लोटिंग, स्टमक डिस्कम्फर्ट, एसिडिटी, ये सब जो है एक्सपीरियंस करते हैं। और रिसर्च ये भी सजेस्ट करता है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेस गट माइक्रोबियोम के बैलेंस को इन्फ्लुएंस भी कर सकता है, जो डाइजेशन और ओवरऑल हेल्थ दोनों को इम्पैक्ट करता है। और स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर आप अपने गट हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना चाहते हो, गट हेल्थ को प्रायोरिटाइज करेंगे तो ओवरऑल हेल्थ में भी बहुत ही अच्छा असर आएगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग, रेगुलर एक्सरसाइज, एडिक्वेट स्लीप, अच्छे से सोना। हसल कल्चर ने हमें बोला है कि नींद बहुत ही अच्छी चीज नहीं है, मगर अगर इफेक्टिवली काम करना है, प्रोडक्टिवली काम करना है तो नींद बहुत इंपॉर्टेंट है और माइंडफुल ईटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है।
1: चैन से जागना है तो सो जाइए।
0: बिल्कुल। ओह, क्या बात कर दी, वाह वाह वाह वाह।
1: कभी कभी तुझे खुद रियलाइज होता है कैसे
0: कर लेते हैं भाई, मगर बहुत बढ़िया बात बोली है। चैन की जिंदगी या फिर चैन का दिन चाहिए तो सोना,
1: तो फिर सोना इंपॉर्टेंट है। और मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने ये बताया कि क्रॉनिक स्ट्रेस से जो है डाइजेशन जो है वो खराब हो जाता है, लेकिन मेरा तो मेजर स्ट्रेस ही है कि मेरा डाइजेशन खराब है। या मेरे जितने न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो मुझसे ये कहते हैं कि बेटा ना आपका वेट इसलिए बढ़ा है क्योंकि आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है, आपके बॉडी में ये प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है। अच्छा, मुझे इस बात का स्ट्रेस है कि पीसीओएस पीसीओडी ना हो जाए क्योंकि स्ट्रेस है, क्योंकि डाइजेशन अच्छा नहीं है। ये सब इंटर
0: रिलेटेड
1: है, तो
0: सब कुछ अभी एक वो बन चुका है,
1: कहीं से तो एक शुरुआत करनी पड़ेगी। शायद मुझे लगता है सो के शुरुआत करनी चाहिए
0: अभी के अभी। चले जाओ सुने के लिए। यही बात बोलते हैं हम भी, आगे बढ़ते हैं और कहते हैं
1: जियो बिंदास।

0: Radio Olive, your happiness frequency.
1: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
2: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
3: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए
4: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ
3: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन
4: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की
3: तो फिर सोचना क्या अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो आज ही शुरू करो सेविंग्स कमर्शियल बैंक सेव And win.
5: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
6: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Shine smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
5: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
7: Hi everyone, I'm Arman Malik.
8: I'm your number one.
7: 106.3 FM. Radio Olive. Jio Bindas.
9: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूं आपकी कशिश।
0: और यहां पे एक बहुत ही बढ़िया बात जो हम आपको बताना चाहेंगे, देखिए आज जो है कतर में रेयर ब्लू मून देखने को मिलेगा। आप नेकेड आई के साथ सनसेट के बाद से मंडे सुबह 4:44 AM तक ब्लू मून देख सकते हैं।
1: मून जो है ब्लू कलर का दिखेगा?
0: नहीं नहीं नहीं, नीले रंग में नहीं आएगा। नीले
1: रंग में रंगने वाला
0: ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये इसलिए बोलते हैं जब एक ही महीने में दो बार फुल मून आता है तो उसे ब्लू मून कहा जाता है। ये जो है एक कैलेंडर बेस्ड फिनोमिनन है। और मई का पहला फुल मून जो है वो 1 मई को था और दूसरा 31 मई को है। और ये घटना जो है हर 2-3 साल में एक बार होती है। पिछला ब्लू मून अगस्त 2023 में था और अगला जो है दिसंबर 2028 में देखने को मिलेगा। तो ये एक रेयर ऑकरेंस है, जरूर आप जो है आज के चांद को देखेगा। और यही बात बोलते हुए
1: चांद मैं तो क्या ही देखूं, मेरा चांद तो मेरे पास है।
0: आप आईना देख लीजिएगा।
1: यस एग्जैक्टली, उसी बारे में बात कर रहे हैं। आपको क्या लगा?
0: मैंने वही तो बोला, आईना देख लीजिए।
1: मैं चांद देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मिरर सेल्फी ले रही हूँ।
0: देखो चांद आया।
1: गाना सुना देते
0: तो गाना सुनाते हैं और आगे बढ़ते हैं और कहते हैं
1: जियो बिंदास।

0: Radio Olive, your happiness frequency.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडो ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो.
2: Shackman की पावर पैक्ड रेंज, हैवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स. दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ. विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ.

0: तुरंत दर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग Shine smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
2: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: Radio Olive, your happiness frequency. सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: शैकमैन की पावर पैक्ड रेंज, हैवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कारमिल के साथ। विजिट कारमिल ग्रुप नाउ।
3: हेलो लिसनर्स, मेरा नाम है राजपाल यादव, राजपाल यादव, और आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।
4: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
5: Radio Olive, I'm a number one. Abu Hogi, Abu Hogi, Bindas Morning.
6: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Shine smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
7: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: जो सेल्फ अवेयरनेस इस गाने में है,
1: यस,
0: वो सेल्फ अवेयरनेस अगर जिंदगी में होती
1: तो
0: IIT क्रैक कर लेता मैं। मेरी मम्मी के ऑफिस में एक आंटी थी, एक बार मैं गया था कॉलेज टाइम पे उनसे मिलने के लिए, मम्मी से मिलने के लिए मम्मी के ऑफिस गया था, तो उन्होंने अपने केबिन में बुला के मुझे बोला कि तुम्हें पता है तुम थोड़ा और पढ़ाई करते तो IIT कर लेते। मैं उनके सामने बैठ के हंस दिया फूट फूट के हंसा मैं। मैं बोला क्या बात कर रहे हो आप, अपने बेटे के बारे में बात कर रहे हो या मेरे बारे में बात कर रहे हो? बोले नहीं तुम IIT कर सकते थे। मैंने बोला एक पहली बात मैं आपको बता दूं,
1: कर तो आप भी अच्छी बात सकते थे।
0: कर तो आप भी अच्छी बात सकते थे, की आपने नहीं ना। तो मैंने बोला देखो IIT तीन अक्षर हैं आपके लिए, ये बहुत सारे लोगों की जिंदगी की कहानी है,
1: जिंदगी तो, लग जाती है सिर्फ IIT क्रैक करने, उसके बाद IIT जाके पढ़ते भी नहीं है, ड्रॉप ले लेते हैं।
0: मैं वो देख रहा था कोटा फैक्ट्री देख रहा था, मैंने देखा उसमें मीना IIT ड्रॉप आउट है। और अगर मैं सोच रहा था अगर मैंने वो हरकत की होती IIT में जाके मैंने ड्रॉप लिया होता, मेरी मम्मी जो मेरे मुखमंडल में स्पर्श करती, जो जो चरण स्पर्श के बाद मेरा हाल होता।
1: गाइस मुझे मैं बस इमेजिन कर पा रही हूँ कितना मजा आ जाता मुझे।
0: वो पहले बोलते एक तो लाखों गवा के तुझे कोचिंग भेजा, उसके बाद वहां गया और तू छोड़ दिया।
1: यार पर बात सही है ना, आप इतनी मेहनत करते हो किसी चीज को, शिद्दत से चाहते हो, कुछ करते हो, पूरी कोशिश करते हो, फिर वहां पहुंचने के बाद आपको लगता है भाई यहां तो पहुंच गई तो वर्थ इट ही नहीं था।
0: मैं एक चीज यहाँ पे हाँ बताना
1: मतलब प्रोसेस में मजा आ रहा था,
0: प्रोसेस का ही मजा होता है। इसका एक साइकोलॉजिकल रीजन मैं बताता हूँ क्या होता है। जब हम कोई गोल सेट कर लेते हैं ना कि मुझे ये गोल है, वो गोल अचीव करने के बाद इंसान कॉम्प्लेसेंट हो जाता है, वो ब्रेन का अपना वो हो रहा है कि अच्छा ये गोल हो गया अब रिलैक्स करते हैं। और गोल अचीव करने तक हम जान लगा देते हैं भाई, मतलब जमीन आसमान एक कर देते हैं, तारों तक की मेहनत कर देते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, मगर जिस दिन गोल अचीव कर लिया हमने उस दिन हम ये हो जाएंगे। इसलिए हमेशा कहते हैं कि हमेशा अपना गोल अपने से बड़ा रखो,
1: बड़ा रखना चाहिए,
0: जो अचीव करना बहुत मुश्किल हो, जिसके लिए तुम स्ट्राइव करते रहो।
1: राइट, और मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा एक गोल नहीं रखना चाहिए, हमेशा अलग अलग, जैसे सीढ़ियां होती है ना,
0: एग्जैक्टली
1: वैसे वो मेंटेन करके रखना चाहिए कि यार अब मैंने IIT कर लिया है तो अब IIT में इतना अच्छा और स्कोर करना है, या इस जगह जॉब लेनी है, या अपने आर्ट को जो है और अच्छा करना है,
0: अच्छा करना।
1: सो ऐसे अगर आप अलग अलग माइलस्टोन जो है खुद के लिए हर टाइम पे बदलते रहेंगे ना, तो आप कभी स्टैग्नेंट नहीं होंगे कि यार भाई अब तो सब जी लिया है, अब लाइफ में रखा क्या है, अब तो एक ट्रॉफी ऑलरेडी ले ली है बैंगलोर ने, अब दूसरे में क्या रखा है,
0: उसके
1: तो
0: बारे में बात करेंगे। मगर
1: बस
0: जिंदगी का एक ही सच है,
1: क्या है
0: वो है परिवर्तन।
1: अच्छा
0: जैसे मौसम बदलता रहता है, दिन बदलेंगे,
1: बिल्कुल
0: बातें बदलेंगी, जज्बात बदलेंगे,
1: बिल्कुल। इसीलिए चेन्नई का टाइम बदल गया और वो हार गई,
0: वही कोई
1: बात नहीं गाइस। देखिए परिवर्तन ही संसार का नियम होता है, विनर्स हर साल
0: ऐसा बदलते। पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। बट यार देखते हैं कि बैंगलोर अपने ट्रॉफी को डिफेंड कर पाएगी कि नहीं, या फिर गुजरात फिर से
1: अलग से पूरी अच्छे तरीके
0: अच्छे
1: से
0: डिटेल में बात फैक्ट्स के साथ बैठ के हम बात करेंगे। थोड़ी देर
1: निकाल कर आती हूँ, आप जो है अपना स्ट्रेस निकाल के आइए इस गाने को सुन के,
0: और सुनिए कूल सॉन्ग ऑफ द आवर, और कहते रहिए
1: जियो बिंदास। रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

0: यार मैं जब भी ये गाना सुनता हूँ मुझे वॉइस ऑफ कतर ही याद आता है, और वॉइस ऑफ कतर में नैनिका हमारी एक पार्टिसिपेंट थी, क्या गाया यार जब उन्होंने, ये छोटी सी प्यारी सी एक बच्ची है, वो एट्थ में पढ़ती होंगी शायद अभी, और जब उन्होंने गाना गाया तो पूरे ऑडियंस में जितने भी लोग थे सब ने खड़े होकर तालियां बजाई, इतना मस्त था परफॉर्मेंस। मैं साइड से खड़े होके देख रहा था, और जो गूजबम वाला मोमेंट था ना, मैं देख रहा था कि यार ये आ कहां से रहा है। इतना मस्त गाया उस लड़की ने, इतना मस्त गाया मतलब, और अनफॉर्चुनेटली वो जीत नहीं पाई थी उस दिन। और उसके बाद मैं गया उसके पास, मैंने उनसे बोला कि आपको आज टाइटल नहीं मिला है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी भी तरीके से कम हो, शायद आपका दिन आज नहीं था, मगर मैं लिख के दे रहा हूँ। और अभी भी मुझे जो लोग सुन रहे हैं, इवन खुदा गवाह है कि आई रियली फील कि वो लड़की बहुत बढ़िया जगह पे पहुंचेगी, और ऐसा पहुंचना भी चाहिए, ऐसा हो इंशाल्लाह, जरूर ऐसा हो,
1: इंशाल्लाह जल्दी से होगा, ऐसा ही होगा, एंड बेहतरी भी होती है यार, मतलब ऐसा लगता है कि जब आप किसी एक टाइटल के बहुत करीब आके थोड़ा सा रह जाते हो ना, फिर एक वो अच्छी अर्थ

0: अगर आ जाए आ गए ना कि यार थोड़ा और बेहतर अगर हम कर लें लाइफ में, तो मैं चाहती हूँ कि वैसे ही कुछ उनके दिमाग में थॉट आया हो इस टाइटल को ना जीतने पर और वो और ज्यादा बेटर कर रहे हो.
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो बढ़िया है. एक बार मेरे को भी सुना दो यार.
1: बिल्कुल सुनाएंगे, हमारे पास है, हमारे बैकअप में सारी चीजें हमने रखी हुई हैं, अगर डिलीट नहीं होता
0: नहीं वरना हम उनको कॉल करके मैं सुन.
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, कोई गल नहीं, हम किसी दिन बुलाएंगे उन्हें. बट यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने के लिए हम दोनों पहुँच चुके हैं. भाई देखिए, आज होगा धुआंधार धमाकेदार मुकाबला बैंगलोर और गुजरात के बीच में. दोनों टीम एक एक बार जो है ट्रॉफी जीत चुके हैं, एक बार विनर्स बन चुके हैं. बैंगलोर के पास मौका है अपने टाइटल को डिफेंड करने का, ट्रॉफी को डिफेंड करने का, कंसेक्यूटिवली जीतने का, जो बहुत ही रेयर ऑकरेंस है. बहुत कम टीम्स के पास ही जो है ये खिताब है. सबसे पहले ये खिताब शुरू किया था चेन्नई ने 2010 और 2011 में, उन्होंने बार बार जीता, बैक टू बैक जीते थे वो. फिर मुंबई के पास भी ये खिताब है. तो बहुत ही तगड़ा मुकाबला होने वाला है. दोनों टीम बहुत ही तगड़े टीम्स हैं. और अगर हम बैंगलोर की बात करें तो बैंगलोर की बैटिंग उनका सबसे बड़ा जो है यूएसपी है. काफ़ी एक्सप्लोसिव बैट्समैन जो हैं बैंगलोर में हैं, उनका लाइनअप काफ़ी अच्छा लाइनअप है. और लाइनअप अगर इनका चल गया, जो हमने देखा था क्वालिफायर वन में 254 रन्स उन्होंने स्कोर किए थे, और अगर इनका लाइनअप चल गया तो इजीली 200 स्कोर जो है वो कर सकते हैं. इजीली बहुत आसान है इनके लिए 200 क्रॉस करना
0: तो, बहुत आसान है. पर आज जो है होम ग्राउंड पे हम गुजरात की खेल रहे हैं, सो मुझे लगता है कि ये भी मेजर फैक्टर हो सकता है कि उतना स्कोर बनाने से थोड़ा सा अगर
1: गुजरात का पिच भी थोड़ा ऐसा है होता है. और यूजुअली जो अहमदाबाद में जब हम पिच देखते हैं, ये कई बार लोग बोलते हैं कि भाई जो टॉस जीतता है ना वो मैच जीतता है, ऐसा होता है. बट इसके दूसरे इम्प्लीकेशंस भी हुए हैं, क्योंकि चेन्नई और गुजरात का फाइनल आया था एक बार, जहां पे गुजरात में ही मैच हो रहा था, अहमदाबाद में ही मैच हो रहा था, और चेन्नई जीत गई थी वो मैच. शॉकिंगली वो मैच जो है चेन्नई जीत गई थी, और हमें बिल्कुल नहीं लगा था. मैं तो भाई मैंने मैच देखना ही बंद कर दिया था कि आज नहीं हो पाएगा. तो ये भी एक बहुत बड़ा मौका है गुजरात के पास. एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, जैसे आपने बोला कि होम ग्राउंड है, और उसके साथ साथ क्या कहते हैं पिच के साथ वो जरूर जो है रूबरू है, वाकिफ है, उनको पता है कैसा है. बट एक चीज अगर हम स्किल लेवल पे बोले तो गुजरात के प्लेयर्स भी बहुत ही स्किल्ड हैं, काफी टैलेंटेड हैं.
0: और अभी जो हमने पिछला मैच देखा उसके बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार इस टीम को अंडर एस्टिमेट तो नहीं किया
1: गुजरात को, तो हम अंडर एस्टिमेट कर ही नहीं सकते, चाहे उनकी बॉलिंग हो बैटिंग हो काफी बैलेंस्ड है. बैंगलोर के साथ मैंने ये देखा है कि अगर भुवनेश्वर कुमार का जो उनका एस ऑफ स्पेड है अभी वो फिलहाल अभी के टाइम पे इस सीजन में, और यूजुअली मैंने कई बार देखा है कि बैंगलोर कंसिस्टेंटली हमेशा अच्छे बैट्समैन को रखती है, बट बॉलिंग डिपार्टमेंट उनका थोड़ा वीक रहता है. इस बार भुवनेश्वर को लेकर आके उन्होंने उस टीम को जो है थोड़ा उस एक एस्पेक्ट को थोड़ा स्ट्रांग कर दिया है, मगर देखते हैं कि कितना वो इफेक्टिव होता है फाइनल में. यहाँ पे एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, भुवनेश्वर एक्चुअली यहाँ पे आके बहुत हैप्पी हैं, क्योंकि हैदराबाद में जब वो खेलते थे उनका जो पीक सीजन था बहुत विकेट्स लेते थे, बट उसके बाद उनका फॉर्म ड्रॉप हो गया और टीम से भी उनकी जगह जो है काफी चली गई थी, तो वो कॉन्फिडेंस लूज कर गए थे. उन्होंने बोला है कि मगर बैंगलोर के कैंप में आके मैंने अपना कॉन्फिडेंस रीगेन किया है, मुझे अपने स्किल्स पर भरोसा होने लग गया, क्योंकि यहाँ का एटमोसफियर वैसा है. तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है. देखिए, प्लेयर स्किल्ड हो ना हो, टैलेंटेड हो ना हो, अगर एक राइट एटमॉस्फेयर में एक बंदा रहता है वो परफॉर्म करेगा. वो एटमॉस्फेयर का होता है, और ये बात वर्क प्लेसेस में भी बहुत ज्यादा जो है वैलिड है, वैल्यूएबल है. हम सब जानते हैं कि हम काम कर रहे हैं, मतलब काम कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत कॉम्पिटेंसी हम में है, ठीक है, मगर उस कॉम्पिटेंसी को चैनलाइज करने लायक अगर ऑर्गेनाइजेशन अपना कल्चर नहीं बना सकते या फिर अपना एक एटमॉस्फेयर नहीं बना सकते, तो वो ऑर्गेनाइजेशनल फेलियर है. वो इंडिविजुअल या फिर एम्प्लॉय का फेलियर नहीं बोल सकते. बट जिस तरीके से प्रथा चलती है, लोग कहते हैं कि हाँ ये काम नहीं कर पाया, मगर भाई काम करने के लिए जो वो होना चाहिए,
0: एटमॉस्फेयर होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और जैसे जाकिर खान ने लोगों के लिए कहा है ना कि देखो काम 19-20 चलता है, बट आदमी 21 ही होना चाहिए, तो वैसे ही जो है काम, सैलरी, पैसे, जो एड ऑन एडवांटेजेस है वो 19-20 चलते हैं, लेकिन अगर एटमॉस्फेयर और माहौल जो है वो 21 है, तो फिर कोई आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, तो सब मन लगा के काम करेंगे ना, अपने आप सब कुछ 21 हो जाएगा.
1: यस, और वही परफॉर्मेंस शायद आज हम फाइनल में देखने वाले हैं. एक अच्छे टीम स्पिरिट का, एक अच्छे टीम कल्चर का जो है कल्मिनेशन आज फिनाले में हमें देखने को मिलेगा गुजरात और बैंगलोर.
0: अभी पूरे टूर्नामेंट में बैंगलोर का सपोर्ट कर रही थी, लेकिन आज ये जो हम फाइनल पे है आज बैठे हुए, मैं आज ये कहना चाहूंगी, देखो आज कोई भी टीम जीते, लेकिन जीत जो है वो क्रिकेट की होनी चाहिए, अच्छे गेम की होनी चाहिए.
1: एंड
0: आज हम एज अ क्रिकेट फैन ये टूर्नामेंट देखने वाले हैं
1: जी.
0: एंड मैं जेन्युइनली वाली बात कह रही हूँ. आज मैं ये भी नहीं पूछूंगी कि आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी. आप बस मुझे ये बताओ कि आप कितने एक्साइटेड हो आज के मैच को लेकर.
1: 3311063 पर आप मैसेज कीजिए, अपने एक्साइटमेंट को शेयर कीजिए. और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं
0: जी ओपन दास.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूं आपकी कसुस।
0: और यहां पे भाई खुशी का माहौल है क्योंकि फिर से कतर की जीत हुई। कैसे जीत हुई है? यस, यूएफए चैंपियंस लीग में फिर से पीएसजी ने जो है जीत का खिताब उठाया है। और काफी टफ मैच था, इवन टूर्नामेंट के पहले मतलब फाइनल के पहले ही बात वो लोग कर रहे थे कि भाई आर्सेनल के साथ मैच इजी नहीं होने वाला है। एंड काफी टफ कॉम्पिटिटर भी है वो। और यहाँ पे अगर हम देखें तो पेनाल्टी शूट आउट में जाके जो है मैच बाहर आया है। मैच का जो रिजल्ट आया है, पीएसजी ने आर्सेनल को पेनाल्टीज में 4-3 से हराकर यूएफए चैंपियंस लीग टाइटल जो है अपना रिटेन कर लिया है, अपने टाइटल को डिफेंड किया है। मैच 120 मिनट के बाद भी 1-1 से ड्रॉ रहा था, तो हम समझ सकते हैं कि कितना टफ रहा होगा मैच। आर्सेनल ने 6th मिनट में ही जो है अपने गोल से लीड ले ली थी, काई हावेज ने जो है गोल किया था। और पीएसजी के उस्मान डेम्बेले ने 65th मिनट में पेनाल्टी कन्वर्ट करके स्कोर इक्वलाइज किया था। और पेनाल्टी शूट आउट में आर्सेनल के गब्रियल ने क्रूशियल पेनाल्टी मिस कर दी, जिसकी वजह से पीएसजी चैंपियन बन गया। और यहाँ पे लुई एनरिके जो पीएसजी के टीम लगा जो मैनेजर भी हैं, वो बोलते हैं कि ये जो सेकंड मतलब कंसेक्यूटिव जो हमने जीता है, इसमें बहुत लोगों की मेहनत है, बहुत सारे लोगों ने जो है अपने बेस्ट परफॉर्मेंस को दिखाया है। और उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि या कि जो मैच था फाइनल का, हमें पहले से ही पता था कि इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी, क्योंकि आर्सेनल जो है पूरे जोर और शोर के साथ आएगा,
1: पूरे जोर शोर से आया और अपना पहला टाइटल जीतने की जो कोशिश थी वो उनकी बिचारी अधूरी। मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया रे फती,
0: कोई बात
1: पहला प्यार अधूरा,
0: कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं, दिल छोटा नहीं करते प्यारे, और भी मौके आएंगे।
1: पूरे टूर्नामेंट में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस, अगर मैं बात करूं स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस जो है वो इस टीम का रहा था, लेकिन फाइनल तक
0: में
1: जीत नहीं पाए। कोई बात नहीं,
0: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो कहते हैं ना कि तू भी स्टेट, अरे दिल छोटा नहीं करते, नेशनल चैंपियन जा, वैसा वाला ही है। अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। और यही बात बोलते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं
1: जियो बिंदास
2: रेडियो

0: सूरत दर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। Shine smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
2: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव,
1: मैं हूं आपकी कशिश।
0: यहां पे एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं। जब मैं स्कूल में पढ़ाई करता था, बड़ी शरारत करता था,
1: स्कूल में पढ़ाई करते थे
0: जी, मतलब थोड़ी बहुत एग्जाम के टाइम पे तो मैं स्काउट्स एंड गाइड्स में था, ठीक है। स्काउट्स एंड गाइड्स में हम ऐसे परेड वरेड ये सब करते थे। हर वेनेसडे स्काउट्स एंड गाइड्स का यूनिफॉर्म पहन के जाते थे, काफी कूल लगते थे, ठीक है, काफी एकदम मस्त। तो हुआ ये कि स्काउट्स एंड गाइड्स में डिफरेंट कैंप्स होते हैं, तो मैं डिफरेंट डिफरेंट कैंप में जाना होता है। उसके भी नाम होते हैं, बट मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा। और तो एक बेसिक लेवल होता है, उसके बाद एक नेक्स्ट लेवल कैंप होता है, उसके बाद आता है नेशनल लेवल, ठीक है। तो उस नेशनल लेवल के पहले वाले कैंप में जब मैं गया, जो रीजनल कैंप था, सारा काम हमें कंप्लीट करना होता है, बहुत सारे नोट्स ये सब लिखने होते हैं, सब लिखना होता है, बहुत पेजेस ऐसे लिखने होते हैं जिसका कोई मतलब मुझे आज तक वो लगा नहीं कि भाई ये क्यों कर रहे हैं। क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हमें सिखाते थे, बताते थे कि तुम्हें इनकेस अगर तुम्हारे किसी फ्रेंड का हाथ अगर शोल्डर डिसलोकेट होता है तो तुम्हें क्या करना है, प्रोसीजर क्या क्या है, ये सब सारी चीजें, बहुत सारी सर्वाइवल स्किल्स जो है ये सब हमें सिखाते थे। बट सिखाने के पहले ही लिखना होता था, तो मुझे वो आइडिया समझ में नहीं आया कि ये क्या बात होती है। और हम टेप क्या था पूरा, जिसने लिखा है किसी एक ने तो लिखा होता है, हर हर एक क्लास में,
1: ग्रुप में, क्लास में एक इंसान होता है जिसको थ्योरी पूरी आती है, भले प्रैक्टिकल में वो कैसा भी हो
0: वैसा हो। तो वही हमने पूरा लिखा, लिख के गया, लिख दिया। और बात यह है कि जिस दिन हमें जाना है कैंप में, हमारा नाम गया है, मगर बस में चढ़ने से पहले हमारी कॉपी फिर से चेक होगी, और अगर उस टाइम पे कंप्लीट नहीं है तो तुम्हें निकाल देंगे, ठीक है। मैंने रात भर बैठ के वो पूरा लिखा, सारा सामान सब समेटा और मैं गया कैंप के लिए। मेरा काम भी कंप्लीट था। कैंप में गया, कपड़े सब रखे, बैग वैग रखा, फिर हम जो होता है डेली बेसिस में जो एक्टिविटीज होती है वो सब करने के बाद जब हम आए वापस रूम में, मैंने रियलाइज किया कि मैं दो चीजें लेकर नहीं आया, एक टॉवल, दूसरा चप्पल। ये दो चीजें मैं भूल गया। टॉवल मैंने उठाया था और मैंने बैग के ऊपर रख दिया था, वो फिसल के बेड में गिर गया था उसके बाद। और चप्पल, पूरे दिन मैं शू पहन के घूमता था, मतलब आउट ऑफ कंपल्शन मुझे करना पड़ता था। बट दिमाग तो तभी तेज था, तो मैंने कई बार पढ़ा था कि कभी कभी तुम एक कॉटन, अगर तुम्हारे पास टी शर्ट भी है तो यू कैन यूज दैट, तो मैं वही यूज करता था। और मैं तो मैं हमेशा नहाने जाते वक्त कपड़े लेकर जाता था, उन्हें ऐसे कवर में बांध के ऊपर लटका देता था, नहाता था, एक टी शर्ट जो मुझे मैं वहां पहनने के लिए लेकर आया था उससे मैं सर धोता हूँ, सर ये सब साफ करता हूँ, और उसको फिर जाके ऐसे बिछा देता हूँ, और वहीं पे कपड़े पहन बदल के वापस चले जाता हूँ। तो मेरा पूरा प्रोसेस अलग था। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया चीजों पे, हमने फोकस नहीं किया, मेरा पूरा अटेंशन किसी और पे चला गया था। और यही होता है डिस्ट्रेस के टाइम में, जब हम रहते हैं तो हमारे अटेंशन को एक चीज बहुत आगे ले जाती है, वो है स्मार्टफोन, डिजिटल इकोसिस्टम, या फिर एआई एनेबल्ड टूल्स जो होते हैं, इन सब चीजों में हम घुस जाते हैं। और HBKU के एक्सपर्ट यानी कि डॉक्टर रायन अली के मुताबिक, अनसर्टेनिटी और अनरेस्ट के दौरान लोग AI पावर्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ज्यादा डिपेंड करने लगते हैं। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन और रीअश्योरेंस के लिए हम इन चीजों पे ज्यादा जो है फोकस डालते हैं। ऐसे सिचुएशंस में क्लैरिटी मिलने के लिए, कंफर्ट के लिए और कंट्रोल का फील पाने के लिए जो है डिजिटल टूल्स और सोशल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल ज्यादा होता है। मगर उन्होंने ये वार्निंग भी दी है कि अनस्टेबल सिचुएशंस में डिजिटल डिपेंडेंसी और कंपल्सिव ऑनलाइन बिहेवियर का भी रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए AI प्लेटफॉर्म्स का बैलेंस्ड यूज जरूरी है, फोकस बहुत जरूरी है कि हम कहाँ पे ध्यान दे रहे हैं, कहाँ पे हमें ध्यान नहीं देना है, अपना टाइम भी रेगुलेट करना है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस दिन मैंने ये सीखी कि कहीं पे भी जाओ तुम लास्ट में एक चेक करो कि तुम क्या क्या कर रहे हो।
1: इसीलिए ना मैंने ना एक चेकलिस्ट बनानी अब शुरू कर दी है कि मैं भले ही मुझे पता है कि मैंने रख ली है चीज, मुझे दिख रही है सामने, पर फिर भी मैं एक बार चेकलिस्ट को फिर से चेक जरूर करती हूँ। एंड ये हंसी वाली बात है कि ये वाली चेकलिस्ट मैंने AI से बनवाई है।
0: AI को यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसे कैसे प्रोडक्टिविटी के लिए यूज करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आजकल के जमाने में AI, अगर हम ये बोलते हैं कि AI तो मैं यूज ही नहीं करूंगा,
1: तो फिर आप स्टूपिड है, क्योंकि आपके पास जब पूरे फीचर्स हैं तो क्यों नहीं। आप अगर आज भी अगर आपके पास सारे फैसिलिटीज हैं, अगर आपके पास एक मिक्सर है, ग्राइंडर है, लेकिन फिर भी आप हाथ से जो है सारी चॉपिंग कर रहे हो और सब काट रहे हो, तो इसका मतलब है आप बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप उतने टाइम में कुछ और प्रोडक्टिव कर सकते हो। सो टेक्नोलॉजी अच्छी चीज है, उसे यूज करना अच्छी बात है, आना चाहिए यूज करना, लेकिन उसको एक्सेस यूज करना कि यार आज एआई मैं कपड़े क्या पहनूं मुझे बता दो, आज खाने में क्या खाऊं मुझे प्लीज बता दो, ये बस आप अपने ब्रेन को जो है आलसी बना रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो।
0: सिंपल बात यही है कि एआई या फिर जो भी डिजिटल टूल हो उसे एक टूल की तरीके से ही यूज करना है, वो एक टूल ही है, उसे उसकी जगह आप बार बार याद दिला दीजिए। और यही बात बोलते हुए हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं
1: जियो बिंदास।

0: short break. Commercial Bank presents CB 2026 Million Rials Dream.
1: अब सिर्फ savings नहीं, सपने grow होंगे. जीतिए पूरे 5 million rials cash prizes.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना account balance बढ़ाइए. हर 10,000 rials growth पर पाइए एक coupon.
1: दूसरा, अगर salary 4,000 plus है या 50% save किया है, तो आप eligible है.
0: तीसरा, नए customers को पहली salary या 10,000 funding पर guaranteed coupon. और चौथा, 9 महीने regular salary पर पाइए एक extra कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: शैकमैन की पावर पैक्ड रेंज, हेवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ. विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ.
3: सलाम प्रणाम नमस्कार वणकम, मैं हूं जैकी श्रॉफ.
4: जैकी श्रॉफ
3: रेडियो 106.3 जियो बिंदास.
5: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.
6: रेडियो
7: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Shine smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
2: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million rials with Commercial Bank.

0: घातक मूवी का गाना है ये।
1: अच्छा,
0: अलका याग्निक और शंकर महादेवन ने गाया है, कोई जाए तो ले आए,
1: कोई जाए तो ले आए मेरे घर से मेरे कपड़े। इंडिया से कोई आ रहा हो तो प्लीज बता दीजिएगा, भोपाल से बहुत सारे कपड़े मंगाने।
0: क्या बात कर दी यहाँ पे, क्या बात। मैं एक्चुअली ये गाना जो है ना, कोई जाए तो ले जाए मेरी लाख दुआएं पाए। तनिषा हमारे बारे में बोलती है।
1: यस, वो तो बोलती है। अभी अभी जस्ट बोल के गई थी दरवाजा खोलने के लिए।
0: बढ़िया। यहाँ पे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो है आपके लिए शेयर करना चाहेंगे। तो जितने भी मर्द जात है, सब सुन लो ध्यान से, ठीक है। आप जो भी कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये प्रूव हो चुका है।
1: बिल्कुल हो चुका है यार। मतलब कई बार लड़कों को ऐसा लगता था ना कि यार लड़कियों को वो लड़के बहुत पसंद होते हैं जो इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं या जो कुकिंग करते हैं। हाँ, वो लड़के बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन जो है अब किसी ने फुर्सत में जो है बैठ कर, मतलब 4 दिन की जो छुट्टी मिली थी शायद उसमें उन्हें टाइम मिल गया होगा, तो उन्होंने रिसर्च कर ली कि ऐसी कौन कौन सी हॉबीज है जो लड़कियों की, लड़कों को अच्छी लगती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: सो सबसे अट्रैक्टिव हॉबी पे सबसे आखिरी में आएंगे, लेकिन मैं शुरुआत करना चाहूंगी राइटिंग से।
0: okay.
1: कि राइटिंग जो है 93.8% अट्रैक्टिव लगती है।
0: क्या बात कर रहे हैं,
1: लड़कियों को। अगर आपको लिखने का शौक है,
0: अब लिखते हैं,
1: ऐसा नहीं है कि
0: पोएट है,
1: पोएट है वैसे वाला राइटिंग, ऐसा नहीं है कि बैठ के मैं कर्सिव राइटिंग करता हूँ।
0: नहीं, वो नहीं, वो नहीं भाई, यही तो प्रॉब्लम है, यही तो हमारे इस मर्द जात के साथ प्रॉब्लम है।
1: ओके,
0: हम वो एसेंस ही नहीं समझ पाते।
1: अगर ऐसा होता राइटिंग पे प्यार कर रही होती, फिर तो डॉक्टर्स की जो है वाइफ ही नहीं होती कभी कोई।
0: और नहीं तो क्या। ऐसा नहीं होता, वो लिखना होता है। तुम कैसे अपने शब्दों से आगे वाले इंसान के दिल में एक एक एक एक एक लहर उठा दी।
1: यस, उसके बाद 94.1% के साथ जो है पेंटिंग है, कि अगर आप सामने वाले की पेंटिंग बना सकते हैं या उसे कुछ बना के अपने हाथ से ड्रॉ करके गिफ्ट करते हैं तो वो अट्रैक्टिव लगता है।
0: यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा। हाँ। मेरी मम्मी ने मुझे आर्ट क्लास में एनरोल किया था।
1: हाँ।
0: जब मैं छोटा बच्चा था,
1: फिर
0: मैंने वहां पे
1: वो दो पहाड़ और एक सन
0: वही सीखा मैंने। वही आता है मुझे अभी भी, वही जैसे मैं 6 साल की उम्र में मतलब बनाता था, 28 साल की उम्र में भी वैसा ही बनाता हूँ।
1: बिल्कुल कोई चेंज नहीं आया है। बढ़िया है, इन्होंने अपने अंदर का बच्चा आर्टिस्ट जो है वो जिंदा रखा है। मुझे ऐसा लगता है कि मजनू भाई है सबके अंदर एक,
0: बिल्कुल,
1: जो पेंटिंग बना है। पर मुझे ना अच्छी लगती है मजनू भाई की पेंटिंग।
0: अच्छा।
1: मतलब मुझसे तो कभी नहीं बना एक घोड़ा और एक गधा अकेले अकेले, उन्होंने एक के ऊपर एक बनाया था। इंटरेस्टिंग बात है यार,
0: जब मैं बनाता हूँ तो लोग कंफ्यूज होते हैं कि है क्या ये, जानवर ही है।
1: बोला अरे गधा है। बोला गधा कहाँ है। बोला
0: तू है, तूने बनाया है।
1: वो तो ये खड़ा है ना जिसने बनाया है,
0: ऐसा हो जाता है।
1: ओके, उसके बाद है वुड वर्किंग।
0: ओके,
1: वुड वर्किंग यानी अगर कार्पेंट्री करते हैं कुछ अपने हाथ से, टेबल वेबल डेस्क वेस्क बना दी तो। उसके बाद कुकिंग, ये तो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है।
0: ओके,
1: एंड उसके बाद प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो भी 95% है। उसके बाद अगर आपको फॉरेन लैंग्वेज आती है तो वो अट्रैक्टिव है। कुछ बोल के दिखाइए।
0: तमल्ली मा तमल्ली हबीबी मख्ताहिला।
1: वैसे यहाँ के लोगों के लिए तो हिंदी
0: फॉरेन
1: लैंग्वेज हुई ना,
0: तो अपना नहीं छोड़ा यार।
1: ओके, उसके बाद सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव जो चीज लगती है वो है 98% अट्रैक्टिवनेस के साथ रीडिंग। लड़कियों को जो लड़के पढ़ते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं।
0: ये क्यों नहीं बताया मुझे 8वीं क्लास में, पढ़ाई कर लेता। मैं पढ़ाई कर लेता, क्यों नहीं बताया।
1: एक मिनट, ये हिंदी की बुक और ना मॉरल साइंस की बुक पढ़ने वाली रीडिंग नहीं है। जो लोग नॉवेल्स पढ़ते हैं, जो लोग ऐसे बात बात पे किसी शायर का नाम ले देते हैं या किसी राइटर का नाम लिख देते हैं कि इन्होंने ना रुडयार्ड किपलिंग ने जंगल बुक में ये लिखा है।
0: क्या बात
1: मुझे सोचो मेरे पास बिल्कुल नॉलेज नहीं है रीडिंग का, कि मैंने रुडयार्ड किपलिंग का एग्जाम्पल दिया।
0: क्या बात कर दी, क्या बात कर, कोई
1: सोचो मैंने जंगल बुक के अलावा और कोई बुक पढ़ी
0: नहीं। ये होता रहा
1: या, मैंने पढ़ी है बट वो क्या होता है कि राइटर्स के नाम इतने टफ होते हैं ना कि मुझे याद ही नहीं हो पाते। जैसे मैंने लास्ट बुक पढ़ी है एल्केमिस्ट,
0: जी
1: दी एल्केमिस्ट मैंने पढ़ी थी एंड वो मुझे बहुत अच्छी लगी है, एंड वही बुक है जो मुझे फिर से पढ़ने का मन है।
0: जी मैं रीडिंग एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। रीडिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, ये सिर्फ इसलिए नहीं कि भाई लड़कियों को पसंद है, बट अगर हम देखें तो हमारे ब्रेन के लिए बहुत बढ़िया है। हम इमेजिन करते हैं, हमारी इमेजिनेशन पावर में बहुत जो है एक इम्प्रूवमेंट आता है। साथ ही साथ किसी वोकैबुलरी का एक वो हो जाता है, मतलब लिंग्विस्टिकली तुम्हें जरूर वो हेल्प करता है बट तुम्हारे ब्रेन पर बहुत अच्छा इफेक्ट डालता है। और उसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि अगर हम रीड करते हैं तो रीडिंग हमें जो है आजकल के जमाने में एक बहुत ही अच्छा डिजिटल डिटॉक्स भी देता है, पेशेंस सिखाता है, अटेंशन स्पैन को वापस रीबिल्ड करने में हेल्प करता है। और यहाँ पे हमने रीडिंग की बात की है तो मैं रिसेंटली एक चीज रीड कर

0: ट्रेंडिंग तो चलती रहेगी, बट या ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नज्म जो यहाँ पे इन्होंने बताई है, लिखी है, और यही लिखा है कि कभी ना कभी हमें अपने प्रायोरिटीज आइडेंटिफाई करने होते हैं, वो काम है या इश्क है. अगर तुम्हारा काम ही तुम्हारा इश्क है तो बहुत खुशकिस्मत हो तुम. और यही बात याद दिलाते हुए हम आगे बढ़ते हैं.
1: यस.
0: और कहते हैं
1: जियो बिंदास.
0: हाँ हाँ हाँ. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.

0: यार एक टाइम जब मिथुन बहुत एक्टिव था इंडस्ट्री में एज अ म्यूजिक डायरेक्टर, काफी कूल गाने आते थे.
1: यस,
0: स्पेशली जो अर्ली 2000s का टाइम है, 2000 टू 2010 एंड 2015 तक हम ले सकते हैं.
1: आई वाज लकी इनफ कि मैं उस टाइम पे जो है ग्रो कर रही थी एंड उस टाइम पे मैं इनका गानों पे ग्रूव कर रही होती थी.
0: मतलब इतने सारे बढ़िया गाने हमारे पास, और अगर हम बात करें तो फिर इमरान सर आ जाते हैं हमारे पास. इमरान हाशमी का बॉलीवुड एक तरफ.
1: हाँ, कुछ ऐसे मेजर कॉम्बोज अगर हम कहें जिसमें ऐसे गाने भी बन रहे थे, ऐसी मूवीज भी बन रही थी.
0: काफी बढ़िया था, मतलब अच्छा कॉम्बिनेशन था. गाने भी अच्छे, मूवीज भी अच्छे, और काफी थॉट प्रोवोकिंग कॉन्सेप्ट्स भी आते थे. बहुत एक्सपेरिमेंटेशन होते थे म्यूजिक के साथ, बहुत एक्सपेरिमेंटेशन होते थे. आजकल भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है मगर वो कुछ जम नहीं रहा. और
1: क्या हो सकता है पता है कि तब ये गाने हमें ऐसे लगते थे कि अरे ये क्या गाने हैं, असली गाने तो 90s में हुआ करते थे, पुराने गाने हुआ करते थे. ये बस तब के लोग नहीं, ये तब के लोग सुन रहे थे. अब हमें अभी के गाने जो है थोड़े से ऐसे लग रहे हैं कि यार क्यों है. बट हो सकता है कि कुछ टाइम बाद हमें ये लगे कि नहीं नहीं, अनूप जैन भी अच्छा अच्छा गाना था यार, अर्ज किया है. देखो
0: अर्ज किया के बारे में मेरे काफी कंट्रोवर्शियल ओपिनियंस हैं. मुझे गाना अच्छा लगता है, बट मुझे हर बार ये, मैं ये हर जगह बोलता हूँ, कोई भी इस गाने के बारे में बात करते हैं तो बहुत ही प्यारा गाना है. मैं भी वो गाना सुनता हूँ कई बार, पसंद मतलब बार बार सुनता रहता हूँ.
1: बहुत अच्छा.
0: कोक स्टूडियो के लिए नहीं है मगर उन्होंने ये बात मुझे समझ में नहीं आता कि भाई जो इंडिया में कोक स्टूडियो चला रहे हैं, जो मार्केटिंग मैनेजर्स हैं, आप लोग भाई अच्छे टैलेंट को ढूंढो. ठीक है, अच्छे म्यूजिकल टैलेंट को ढूंढो, अच्छे साउंड्स को ढूंढो और उसे लेकर आओ. जो चीज नहीं सुनी किसी ने आज तक, right, उसे लेकर आओ.
1: exactly.
0: और ये प्रॉबेबली देखिए मार्केटिंग, जो अभी बहुत सारे लोग जो मार्केटिंग में हैं शायद ये बात सुनेंगे तो समझ पाए, उन्हें समझ में आ जाए. अब जो लोग नॉर्मली सुन रहे हैं वो उनको भी मैं बता देता हूँ, ये भी आपने नोटिस किया होगा, जो उस टाइम पे वायरल होता है हम उस चीज़ को लेकर आते हैं ताकि ट्रैक्शन बढ़े, ट्रैक्शन मिले. और यही चीज़ जो है मुझे लगता है अनुज जैन के साथ भी उन्होंने सोचा होगा. आई एम नॉट टेकिंग अवे दैट ही इज नॉट अ गुड सिंगर, ही इज एन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक सिंगर, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं.
1: पर कोक स्टूडियो वर्दी अगर मैं कहूँ तो वो नहीं है, जहाँ पर हम रूट्स पे जा रहे थे, जहाँ पर हम ऐसे टैलेंट्स को ढूंढ के ला रहे थे जो काफी सालों से म्यूजिक के लिए काम कर रहे हैं पर उन्हें वो स्टेज नहीं मिल रहा है. अनुव जैन ने ऑलरेडी अपना स्टेज खुद क्यूरेट किया है. उन्होंने पहले खुद किया, फिर उन्हें गाने मिलने शुरू हो गए एंड अब वो एक बहुत बड़े स्टार है, उन्हें उनका वो फेम मिल गया. लेकिन अब जिन्हें जरूरत है थोड़े से उस कोक स्टूडियो के सपोर्ट की, मुझे लगता है ए अजनबी एक ऐसा एग्जाम्पल है जहां पर वो सही ब्लेंड हमें कहीं ना कहीं देखने मिलता है. आदित्य त्रिखारी जो ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश सिंगर है लेकिन कहीं ना कहीं वो जो राजस्थान के गाने का रूट्स फोक लाए हैं, वो कहीं ना कहीं एक कोक स्टूडियो वर्दी गाना फिर भी बन पा रहा है. फिर भी वो जो कोक स्टूडियो के इनिशियल डेज थे वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है थोड़े से मिसिंग.
0: वो मदारी या फिर बिस्मिल्लाह या फिर अगर हम देखें मल्हार जैम, अगर किसी ने नहीं सुना तो कोक स्टूडियो का एक ऐसा क्लासिक है जिसमें वोकल्स है ही नहीं. वोकल्स इन द सेंस बस आलाप है, प्योरली इंस्ट्रूमेंटल है और राग मल्हार पर बेस्ड है. राग मल्हार बारिश को लेके आने के लिए जो राग होता है बारिश के टाइम पे, बाद मानसून राग भी बोलते हैं उसे, मानसून के टाइम पे जो राग होता है उसे कहते हैं.
1: एग्जैक्टली. और कई बार ऐसा लगता है कि आलाप है या ये सब तो बहुत बोर हो जाएंगे जब तक लिरिक्स नहीं है, कैसे एक बार आप ड्राइव कर रहे हो और ये जो है चला के देखो ट्रैक. मैं सच बता रही हूँ, मुझे भी ऐसा लगता था कि आलाप वालाप में मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वाइब सेट हो जाएगी. अगर आपका दिमाग बहुत क्लटर्ड है, बहुत कुछ चल रहा है, ये ट्रैक चलाओ एकदम सूदिंग वाली फीलिंग आ जाएगी, मजा आ जाएगा.
0: और उसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं आपको कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने कई बार नोटिस की है, बट मे भी मेरा सोचने का तरीका अलग हो सकता है या फिर गलत हो सकता है. मैं ये क्लेम नहीं कर रहा कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सत्य है, बिल्कुल नहीं है. संसार का सिर्फ एक ही सत्य है, वो है परिवर्तन.
1: तो वक्त के साथ बदलना पड़ता है, लेकिन कई बार बदलाव ऐसे ना हो कि हमारे रूट जो है वो पीछे छूट जाए.
0: बिल्कुल. इसी मामले में अगर हम कतर का एग्जांपल ले, कतर आगे बहुत सारी चीजों में बढ़ रहा है मगर अपने रूट्स को लेके बढ़ रहा है.
1: एंड दैट्स द बेस्ट थिंग. मैं कटारा के वो फायरवर्क्स वाले शो में गई एंड वहां पे काफी सारी नई चीजें थी, नए इंस्ट्रूमेंट्स थे, लेकिन वो जो रूट कल्चर है, वो जो ऑथेंटिक म्यूजिक बैंड्स हैं या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको यूज करके किस तरीके से नए बीट्स एंड नई चीजें क्रिएट कर सकते हैं, ये मेरे लिए एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था जो मैंने लिया. सो मुझे अच्छा लगता है कि जब कल्चर के साथ कोई एक नया एक्सपेरिमेंट करता है.
0: एग्जैक्टली. और यही बात बताते हैं हम भी, जरा आगे बढ़ते हैं अपना रेंट फिलहाल के लिए यहाँ पे खत्म करके गाना प्ले करते हैं और कहते हैं
1: जी अविनाश.

0: छोटे एड ब्रेक्स दिखाई दे रहे हैं माँ।
1: ऑल एफ शॉर्ट ब्रेक।
0: पहला जादू।
2: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो Ooredoo ऐप पर। ऑफर वैलिड है 31st मई तक। एक्सपीरियंस मोर विद Ooredoo।
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। Shine smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
4: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
5: Salaam, pranam, namaskar, vanakkam. I am Jackie Shroff. Radio Olive. Bolo Bindas.

0: स्टेशन क्लॉक में जो है 9:54 हो रहे हैं। 54 बोला ना, सही बोला ना मैंने?
1: पता नहीं मुझे यार, क्या मुझे बात 30 के आगे हिंदी में आती नहीं है।
0: क्या बात कर रहे हैं, देखिए ये है आज का यूथ, इन्हें अपनी भाषा के बारे में कुछ नहीं पता। और लोग बोलेंगे तुझे बड़ा पता है। नहीं मुझे भी नहीं पता, मगर मैं अग्री करता हूँ मुझे नहीं पता। बढ़िया, और अभी धीरे धीरे हमारे यहाँ से टाटा बाबाई करके निकलने का वक्त जो है आ चुका है। बहुत बातें की हमने, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात किया और आज काफ़ी फन किया। देखिए जाते जाते जाते हम यही याद दिलाना चाहते हैं कि नेवर टेक लाइफ सीरियसली, ठीक है? यहाँ से हमें से कोई जिंदा नहीं जाने वाला, तो हमेशा लाइफ को एक एक, एक फन तरीके से,
1: जज्बे के साथ जिए,
0: सिंसियर रहो, सीरियस नहीं। लाइफ में आपको सिंसेरिटी की जरूरत है, सीरियसनेस की नहीं है। तो ये चीज हमेशा याद रखना। और अगर कोई पूछे कि किसने बताए, तो बोला कि एक है मेजबान
1: सुदेव, कान पे हाथ रखते हुए बोल देना श्री श्री सुदेव जी,
0: गुरुजी ने सिखाया। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम कोई गुरुजी गुरुजी नहीं है। बढ़िया, जो लगता है हमें कि हाँ ये शायद सही हो सकता है, वो हम बताते हैं। और धीरे धीरे जरा निकलते हैं, टाटा बाय बाय करते हैं। थोड़ी देर में यहाँ पे मुस्कान आ जाएगी आपके साथ गुफ्तगू करने के लिए। मुस्कान को बहुत सारा प्यार देना, जितना हमें दिया है उतना और उससे ज्यादा प्यार देना। और यही हम याद दिलाएंगे कि अपना ख्याल रखना, अपने खास लोगों का ख्याल रखना और हमें जरा दुआओं में
1: याद रखना।
0: तो चलते हैं, फिर मिलेंगे कल सुबह 6 बजे इसी सीट पर। हम आएंगे आप दोनों से गुफ्तगू करने के लिए। फिसल गया एकदम से जबान मेरा। मैंने आंखें क्या बंद कर ली, मैं पूरा घूमी हो गया था। तो कल मिलते हैं, टिल देन एंजॉय, हैव फन एंड कीप ऑन सेइंग जियो बिंदास।

Good morning. You are listening Radio Olive 106.3 FM. This is me, Muskan, with you. और शो का नाम है Life Must है भाई. ईद की मिठास अभी भी जुबान पर है, लेकिन अलार्म क्लॉक ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि हॉलीडेज खत्म. सच बताएगा, ईद से पहले हम ये बोल रहे थे बस छुट्टी मिल जाए, और ईद के बाद बोलते हैं कि यार बस दो दिन और मिल जाते काश. सो इंटरेस्टिंग थिंग, साइकोलॉजिस्ट जो है इस फीलिंग को पोस्ट हॉलीडे ब्लूज बोलते हैं. इवन रिसर्च के अकॉर्डिंग हॉलीडेज के बाद ब्रेन को रूटीन में वापस आने में थोड़ा सा ना टाइम लगता है, क्योंकि सडनली फ्रीडम से स्केड्यूल मोड में शिफ्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है. लेकिन गुड न्यूज़ यह है कि हर संडे एक मिनी न्यू ईयर जैसा फील होता है, नया वीक, नई एनर्जी, नई अपॉर्चुनिटीज. और दोहा में आज सबके कॉन्वर्सेशन ऑलमोस्ट सेम है. ईद कैसी थी, कितना खाया, कितना सोया, क्या क्या प्लान किया. तो आज का शो भी एग्जैक्टली इसी मूड में रहेगा, थोड़ा सा फन, थोड़ी सी नॉलेज और थोड़ा सा रियलिटी चेक. सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव विद दिस ब्यूटीफुल ट्रैक. मुस्कान आ चुकी है लाइफ मस्त है लेकर, और थोड़ी देर में आज हम बात करने वाले हैं ब्लू मून इन कतर की. भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है मुझे ये सब. सो डोंट गो एनीवेयर, सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: Check. Brought to you by Danatal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif Alkhol.
1: Shackman ki power packed range, heavy trucks, tippers, trailers aur boom trucks. Damdar performance aur bharosa. Sirf Carmel ke saath. Visit Carmel Group now.
2: हेलो नमस्कार, मम्मा मिया, मैं हूँ चंकी पांडे और आप सुन रहे हो मुझे रेडियो ओलिव।

0: सो भाई, एक जमाना था जब सोशल मीडिया पर सिर्फ अकाउंट बनाना पड़ता था, और आज का जमाना है जहां लगता है सोशल मीडिया भी नेटफ्लिक्स बनने की तैयारी में है। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल 106.3 FM, दिस इज मी मुस्कान विद यू, और शो का नाम है लाइफ मस्त है। मेटा यानी इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी नए सब्सक्रिप्शन मॉडल पर काम कर रही है, और अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि सोशल मीडिया की दुनिया ना बदल सी रही है। पहले क्या होता था, फोटो डालो, स्टोरी लगाओ, मैसेजेस करो, सब फ्री, और अब ब्लू टिक के पैसे लग रहे हैं। ठीक है, एक्सक्लूसिव कंटेंट के जो आपको अमाउंट है पे करना पड़ेगा, क्रिएटर सब्सक्रिप्शन अलग से चालू हो गया, और प्रीमियम फीचर्स तो है ही, और इसी के साथ फ्यूचर में हो सकता है कि और भी ऑप्शंस आ जाएं। लेकिन बात यह है कि सोशल मीडिया कंपनीज का पूरा बिजनेस एड्स पर चलता है, लेकिन अब यूजर्स की कंप्लेन आ रही है और उनको लगता है कि यार ये हर तीसरी रील के बाद ना एड आ जाता है, तो कंपनीज सोच रही हैं कि लोग एक्स्ट्रा फीचर्स चाहते हैं या फिर कम एड्स देखना चाहते हैं, उनके लिए पेड ऑप्शन लाया जाए। वैसे एक फनी ऑब्जर्वेशन ये भी है कि हम लोग पहले केबल टीवी के पैसे देते थे, राइट, पर इंटरनेट आया, सब कुछ फ्री हो गया। अब इंटरनेट धीरे धीरे फिर से पेड हो रहा है, और व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक हमारी डेली लाइफ इतना ज्यादा बड़ा पार्ट बन गए ना इन सब चीजों के। सो अब एड अगर आप नहीं देखना चाहते हो और एड फ्री इंस्टाग्राम चाहते हो, तो उसके लिए आपको हो सकता है आने वाले टाइम में 10 रियाल पर मंथ या फिर कुछ और अमाउंट देना पड़े, तो बहुत जल्दी ये सब हो सकता है। और अगर इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप आपको प्रीमियम प्लान ऑफर करे जिसमें एड्स ना हो, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हो, तो क्या आप उसके पैसे दोगे या फिर आप बोलोगे कि भाई फ्री वाला ही ठीक है? 3311063 इज माई नंबर। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द

करिश्मा कपूर ने 25 साल पहले इतना इन्फ्लुएंस किया था अपने कपड़ों से, बस उस वक्त ना इंस्टाग्राम नहीं था इन्फ्लुएंसर बनने के लिए. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल अबाउट 106.3 एफएम. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है. आज जेन जी जो यू नो Y2K के फैशन पहनते हैं उसमें से आधा इंस्पिरेशन तो करिश्मा कपूर ऑलरेडी 2000s में दे चुकी है. मूवी का नाम था दुल्हन हम ले जाएंगे, ठीक है. अब इस मूवी में कलरफुल कॉट सेट्स, क्रॉप टॉप्स, स्कार्फ्स, कार्गो पैंट्स, टिंटेड सनग्लासेस, सब कुछ था. मतलब जब मैं इसकी पिक्चर्स देखती, इवन बूट्स, स्कर्ट्स, मतलब जो भी आप आज के टाइम पे यू नो जेंजीज को पहने हुए देखते हो वो सब करिश्मा कपूर ने उस मूवी में पहना हुआ है. एंड फैशन एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि ट्रेंड यूजुअली 20-25 साल के बाद कम बैक करता है, और बस वही 25 साल जो है करिश्मा कपूर के वो आपको वापस से दिख रहे हैं. और एग्जैक्टली मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होता भी है, चाहे वो अनारकली सूट्स हों, चाहे वो शिफॉन साड़ीज हो, चाहे वो कोई ट्रेडिशनल कपड़े हो, सब वापस आते हैं. शरारा, गरारा, ये सब भी पहले बहुत चला करते थे और फिर एकदम से बंद हो गए और अब वापस आ गए. सो पिंटरेस्ट और इंस्टाग्राम पर करिश्मा के जो लुक्स हैं वो दोबारा वायरल हो रहे हैं. और ऑनेस्टली उस फिल्म के आउटफिट्स आज भी आउटडेटेड नहीं लगते हैं. जब आप वो मूवी देखोगे या जब आप उनके पिक्चर्स देखोगे तो कुछ फैशन ना टाइमलेस होता है. बस करिश्मा कपूर उस एरा की क्वीन थी, पर उस टाइम पे इंस्टाग्राम नहीं था. सो यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. मैं हूं मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: सो भाई आज की जो किताब है ये मैथ्स के बारे में है लेकिन इमोशंस ज्यादा सिखाती है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है और आज हम किताब के बारे में बात करने वाले हैं विच इज द हाउस कीपर एंड द प्रोफेसर।
1: ओके बुक इन फोकस विद मुस्कान।
0: सो यहाँ पर ये जापानीज बेस्ट सेलर एक रिटायर्ड मैथमेटिक्स प्रोफेसर की स्टोरी है। उनकी मेमोरी ना सिर्फ 80 मिनट्स तक काम करती है, राइट? बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है, मतलब आपको इस किताब को पढ़ के ना ऐसे रुकने का मन नहीं करेगा। उनकी मेमोरी सिर्फ 80 मिनट तक काम करती है, ये सुन के आपको मजा आने वाला है क्योंकि हर 80 मिनट के बाद उन्हें सब कुछ दोबारा याद करवाना पड़ता है। और फिर उनकी लाइफ में एक हाउसकीपर और उसका बेटा आते हैं, राइट? सो बुक मैथ्स को फॉर्मूला की तरह नहीं है, स्टोरीज की तरह उसे एक्सप्लेन करती है, प्राइम नंबर्स, पैटर्न्स और फ्रेंडशिप। और सबसे ब्यूटीफुल लेसन पता है क्या है? ह्यूमन कनेक्शन मेमोरी से भी पावरफुल हो सकता है। सिंपल बुक है लेकिन दिल में रह जाती है। सो आई वॉज थिंकिंग कि भाई इतनी सिंपल सी बुक लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट बहुत नया है। सोचिए अगर आपको कुछ सिर्फ 80 मिनट के लिए याद रहे और उसके बाद दोबारा से आपको सब कुछ ऐसे ना रिवीजन करना पड़े, मतलब मैं तो ये सोच के ही डर गई थी कि कैसे कोई एग्जाम देगा, कैसे कोई इन 80 मिनट में अपने सारे काम करेगा। सो दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, सो यू कैन रीड दिस, जिसका नाम मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ और एक बार फिर से बता देती हूँ कि इस किताब का नाम है द हाउस कीपर एंड द प्रोफेसर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल अवेलेबल, बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: Popolari. Life must
1: have. So, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग दिन है क्योंकि टुडे इज 31st ऑफ मई और आज होने वाला है फाइनल बेंगलुरु वर्सेस गुजरात के बीच में. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम. दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम है लाइफ मस्त है. बस इस दिन का इंतजार हम पिछले कई दिनों से कर रहे थे. पहले क्वालिफायर वन हुआ, फिर एक टीम जीती एक हारी, फिर क्वालिफायर टू और इसी के साथ साथ फाइनल तक पहुंचते आप सबकी फेवरेट टीम, वन ऑफ योर फेवरेट टीम जिसके लिए सबसे ज्यादा मैसेजेस आए हैं विच इज बेंगलुरु. इतनी ज्यादा डिमांड थी इसकी भाई फाइनल में पहुंच चुकी है. सो आज शाम को ये मैच होने वाला है और अगर मैं इस मैच की बात करूं तो गुजरात ने 2022 में अपने पहले सीजन में चैंपियन बन के दिखाया था बॉस. तो आज जो मुकाबला है ये बहुत डिफिकल्ट होने वाला है क्योंकि क्वालिफायर वन में बैंगलोर ने गुजरात को हराया था. बैंगलोर और गुजरात ने पिछला जो मैच था वो 26 तारीख को लास्ट खेला था. टुडे इज 31st ऑफ मई. सो उस टाइम पर बैंगलोर की टीम गुजरात पर बहुत ज़्यादा हावी हो गई थी और 92 रन से मैच जीता था. अब अगर मैं आज की बात करूं तो आज का मैच भी बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है क्योंकि यहां पर दोनों की ही अगर आप स्ट्रैटेजी देखो तो आपको समझ में आएगा कि मैचेस बहुत अच्छे होने वाले हैं. वी विल टॉक अबाउट स्ट्रेटजीज. आप कहीं मत जाइए, सुन रहे रेडियो ऑलिवर. बताइए कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है. 3311106 इज माय नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिवर. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

0: सो छुट्टियां तो भाई खत्म हो गई हैं, मतलब ईद की, पर हर कोई ये चाहता है कि काश आज और छुट्टी मिल जाती, क्योंकि आज होने वाला है भाई मतलब गुजरात वर्सेस बेंगलुरु, जिसमें गुजरात के टॉप थ्री प्लेयर्स की अगर मैं बात करूं तो आपको पता ही है शुभमन गिल क्वालिफायर टू में राजस्थान के खिलाफ 104 रन बनाए और पहली सेंचुरी लगाई, और इस सीजन में 6 हाफ सेंचुरी भी लगाई उन्होंने, 15 मैचेस में 722 रन्स बना चुके हैं। फिर आते हैं साई सुदर्शन, राजस्थान के साथ जब मैच था तो 58 रन्स बनाए थे और शुभमन गिल के साथ ही 77 बॉल्स पर 167 रन की जो पार्टनरशिप थी वो भी की थी। उसके बाद कगिसो रबाडा, मतलब ये तीनों ही प्लेयर बहुत अच्छे हैं। उसके बाद बेंगलुरु के पास भी बहुत अच्छे तीन प्लेयर्स हैं, विच इज़ विराट कोहली, रजत पाटीदार और भुवनेश्वर कुमार। अब रजत पाटीदार इस बार कैप्टन है, आपको पता है क्वालिफायर वन में गुजरात के टाइम पर जब मैच हो रहा था तब उन्होंने नॉट आउट होकर 93 रन की पारी खेली थी और स्कोर था 250 के ऊपर, और इस सीजन में 14 मैचेस में 196.76 के स्ट्राइक रेट से 486 रन बनाए थे उन्होंने, विच वॉज लाइक बहुत बड़ा नंबर। सो भुवनेश्वर कुमार भी ऐसे ही कमाल दिखाते हैं और विराट कोहली तो फिर है ही सीनियर प्लेयर। सो आज दोनों ही टीम के पास बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, स्ट्रैटेजी दोनों की बहुत अच्छी है, पर आप मुझे बताइए कि क्या लगता है आपको कौन जीतेगा। 3311063 इज माय नंबर, फटाफट से व्हाट्सएप कीजिए। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

0: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो Ooredoo ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद Ooredoo.
1: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

ऐसे कॉन्वर्सेशंस में सुना है कि बच्चे उन्हीं को कॉपी करते हैं, तो मैं सोचा व्हाई नॉट लेट्स टॉक अबाउट दिस। और रिसर्च भी यही कहती है कि बच्चे जो हैं वो हेल्थ हैबिट्स, फैमिली इन्वायरमेंट से स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड उनके होती हैं, और किड्स रेयरली जो लेक्चर्स हैं उनको फॉलो करते हैं, दे फॉलो एग्जाम्पल्स। अगर फैमिली वीकेंड पर मॉल के साथ पार्क भी जाती है तो फिर वो भी पार्क जाएंगे, उनको भी वही आदत लगेगी। अगर स्क्रीन के साथ स्पोर्ट्स भी होते हैं तो फिर उनको भी यही पता है कि भाई स्क्रीन टाइम इज़ वेरी लिमिटेड, हमें खेलने भी जाना है। सो क्वेश्चन सिंपल है कि बच्चे जो स्क्रॉल करते हैं या बच्चे जो बहुत ज़्यादा मूव करते हैं, एक्टिव रहते हैं, उन दोनों में ना बहुत डिफरेंस होता है। और आप अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, मतलब क्या आपके बच्चे सबसे ज़्यादा कॉपी करते हैं, बताइए मुझे। डिफरेंस मोस्टली फैमिली कल्चर क्रिएट ही करता है, तो आप मुझे बताइए कि आप कैसे अपने बच्चों के साथ डील करते हैं। 3311106 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

आपको क्या लगता है, वेट गेन कभी भी ऐसे सडनली नहीं होता? वेट कभी ईद के गुलाब जामुन से नहीं बढ़ता, वेट यूजुअली स्मॉल डेली हैबिट्स की वजह से ही बढ़ता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार ईद पे इतना कुछ खा लिया है तो अब वेट फटाफट से बढ़ रहा है, तो ऐसा नहीं है, ये आपकी स्लो स्लो जो हैबिट्स हैं उनकी वजह से होता है। सो बेसिकली पुअर स्लीप, स्ट्रेस, शुगरी ड्रिंक्स, लेट नाइट स्नैकिंग और सबसे डेंजरस लिक्विड कैलोरीज। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। अब इनमें सबसे ज्यादा शुगरी ड्रिंक्स ही हैं जो हम दिन भर में अपने आप को थोड़ा सा बेस्ट और बेटर रखने के लिए करते हैं। सो क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि कैलोरीज आ गई हैं, आपने कुछ शुगर ले लिया है, कुछ शुगर इंटेक हो गया है, तो आप एनर्जेटिक फील करते हो। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि मॉर्निंग ब्लैक कॉफी मेटाबॉलिज्म को टेम्पररी बूस्ट कर सकती है क्योंकि कैफीन अलर्टनेस और कैलोरीज बर्निंग स्लाइटली इंक्रीज करती है। लेकिन ब्लैक कॉफी मैजिक सॉल्यूशन नहीं है, स्लीप प्लस मूवमेंट प्लस रूटीन मतलब रियल सॉल्यूशन। तो आपको सुबह सुबह अगर ऐसा लगता है कि यार वेट गेन हो रहा है तो आप एक ब्लैक कॉफी पी सकते हो, वो आपके लिए बेटर ऑप्शन है, पर उसके साथ आपको बहुत सारी दूसरी चीजें भी एड ऑन करनी पड़ेंगी। वेट स्केल सडनली शॉक देता है, लेकिन स्टोरी जो है वो धीरे धीरे महीनों पहले से स्टार्ट हो चुकी होती है। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दैट थिंग्स। यू नो, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है, जहां पर हर दिन हम अपनी डेली हैबिट्स के बारे में बात करते हैं, कुछ किताबों के बारे में बात करते हैं। तो आप मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी आदत है जिसे आप बदलने की कोशिश कर रहे हो धीरे धीरे। 3311063 इज माय नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास रेडियो।

0: सो एयरपोर्ट की फास्टेस्ट लाइन कौन सी होती है जहां कोई लाइन ही नहीं होती. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूं मुस्कान. शो का नाम लाइफ मस्त है. ठीक है, अब हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रैवलर्स को इनकरेज कर रहा है कि एलिजिबल पैसेंजर्स ई गेट यूज करें और अब फैमिलीज विद चिल्ड्रन अबव 130 सेंटीमीटर्स भी इसका बेनिफिट्स ले सकते हैं, मतलब बच्चों की हाइट के हिसाब से. सो इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ट्रेडिशनल इमिग्रेशन प्रोसेसिंग में बहुत ज्यादा मैनुअल वेरिफिकेशन होती है. ई गेट्स जो है वो बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, फेस रिकॉग्नाइज करते हैं, पासपोर्ट वेरिफिकेशन हो जाता है और प्रोसेस काफी फास्ट हो जाती है. सो मॉडर्न एयरपोर्ट्स का जो गोल है वो काफी अच्छा है, मतलब यही है कि लेस वेटिंग हो और मोर ट्रैवलिंग हो, मतलब ट्रैवलर्स को बिल्कुल भी वेट ना करना पड़े, थकान ना हो. और इसी के साथ एयरपोर्ट पर 20 मिनट बच जाते हैं और ऐसा लगता है कि अचीवमेंट ले लिया है, क्योंकि हमें बाहर और अंदर जाके मतलब शॉपिंग भी तो करनी होती है. अगर आप यू नो अंदर जा रहे हो तो एयरपोर्ट पर जल्दी जाने का मतलब यही है कि भाई अच्छी से शॉपिंग करनी है. सो डिस्काउंट्स मिल जाते हैं बहुत सारे इन्हीं के बीच में. आई विल से कि नेक्स्ट टाइम याद रखिएगा ई गेट्स जो है वो ओपन हो चुके हैं. इसी के साथ आई विल टॉक अबाउट वर्किंग मॉम्स वर्सेस स्टे एट होम मॉम्स. मतलब बहुत बड़ा कॉन्वर्सेशन चल रहा था भाई एक्स पर इस टाइम पर, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी के बारे में थोड़ी सी बात की जाए. अब आप मुझे थोड़ी देर में बताना कि आप वर्किंग हो या फिर आप अपने घर पर रहकर अपने बच्चों का, अपनी बाकी सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं. 3311106 इज माई नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून. जियो बंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: बात है सर, क्या बात, ये बात है.

वैसे तो दो तरह की यू नो लोग होते हैं, जिसमें वर्किंग मॉम्स आती हैं, दूसरा होता है यू नो हाउस मैनेजर, और तीसरा होता है जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे होते हैं, जिन्हें हर कोई मतलब बहुत हल्के में लेता है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान, शो का नाम लाइफ मस्त है। भाई मैंने इन तीनों की लाइफ देखी है। सो अगर आप वर्किंग हो और आप ऑफिस जा रहे हो तो आपको पता है कि भाई इस टाइम पर जाना है, इस टाइम पर आना है, तो कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता। दूसरा जो हाउस मैनेजर्स होती हैं, मतलब पूरा घर संभालती हैं, फिर भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है, एंड मतलब उनका काम तो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है। फिर तीसरे होते हैं वर्क फ्रॉम होम, जिन्हें कोई भी मतलब सीरियसली नहीं लेता, उन्हें घर का भी काम करना पड़ता है और ऑफिस का भी, और दोनों बिल्कुल सेम टाइम पे कॉल पे होते होते बाकी गैस पे क्या रखा है वो भी देखना पड़ता है। सो स्ट्रॉन्ग किड्स का सीक्रेट यहाँ पे मैं आपसे शेयर करती हूँ। वर्किंग मॉम्स या फिर स्टे एट होम मॉम जो है वो नहीं, बल्कि स्ट्रॉन्ग पेरेंटिंग होती है। मैं कल एक बहुत ही बड़ा आर्टिकल पढ़ रही थी और बहुत बहुत बड़ी कॉन्वर्सेशन चल रही थी कि भाई कौन सी मॉम जो है वो बच्चों को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है, बट मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग पेरेंटिंग होती है जो बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाती है। एक फेमस रिसर्च में देखा गया है कि वर्किंग मदर्स के बच्चे बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें छोटी सी चीज़, छोटी सी एज में रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेल्फ मैनेजमेंट सीखना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो स्टे एट होम वाली मॉम्स हैं उनके बच्चे लेस स्ट्रॉन्गर होते हैं। भाई मेरी मम्मी तो हमेशा घर पर रही हैं, उन्होंने पूरा घर संभाला है, बट मुझे लगता है कि आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट। सो रिसर्च ये भी बोलती है कि हाईली इन्वॉल्व जो स्टे एट होम पेरेंट्स होते हैं वो इमोशनल सपोर्ट, रूटीन और स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर पाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा यू नो सक्सेसफुल होते हैं। तो एक बच्चा जो यू नो घर पे रहने वाली मम्मी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है या फिर कम टाइम स्पेंड करता है, ये डिपेंड करता है पेरेंटिंग पे कि आप बच्चों को क्या सिखा रहे हैं या बच्चे आपसे क्या जल्दी सीख पा रहे हैं। सो बेसिकली बिगेस्ट फैक्टर क्या है? लव, कंसिस्टेंसी और वैल्यूज़, मतलब मुझे ऐसा लगता है। बाकी आपके हिसाब से बच्चे सबसे ज़्यादा क्या सीखते हैं, पेरेंट्स की बातों से या

0: भाई छुट्टियां तो खत्म हो गई हैं लेकिन मेमोरीज अभी भी चेकआउट नहीं हुई। ईद के कपड़े वार्डरोब में वापस चले जाएंगे, गेस्ट घर चले जाएंगे, फोटोज गैलरी में सेव हो जाएंगी, लेकिन जो मोमेंट्स मिले हैं वो साथ रहेंगे हमेशा। और लाइफ इसी का नाम है यार, मतलब बिग इवेंट्स कम याद रहते हैं, स्मॉल मोमेंट्स ज़्यादा। फैमिली डिनर्स, लेट नाइट चैट्स, लेट नाइट चाय, रैंडम लाफ्टर, बस यही सब है जो टाइम याद रह जाता है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। और आज बात करके बहुत आया क्योंकि सब लोग वापस अपने ऑफिस जा रहे हैं या फिर ऑफिस में हैं या ऑफिस से लौट रहे हैं या किसी मीटिंग के लिए जा रहे हैं और एवरीबॉडी इज टेक्सटिंग और अपनी अपनी यू नो ईद स्टोरीज सुना रहे हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती है यू नो। सो अब मुझे ऐसा लगता है कि आज मेरे जाने का टाइम आ गया है। कल सुबह 10 बजे मिलेंगे लाइफ मस्त है लेकर, तब तक इन ब्यूटिफुल गानों को इन्जॉय कीजिए। और आज से नया वीक शुरू हो चुका है तो ईद की एनर्जी के साथ यू नो इस काम पे वापस फोकस कीजिए, रूटीन को थोड़ा स्माइल करके वेलकम कीजिए। कैलेंडर पर हॉलीडे खत्म हो सकते हैं लेकिन अच्छी यादें कभी भी नहीं। सो टेक केयर, सुनते रहिए रेडियो ऑलिव और याद रखिए कि लाइफ मस्त है। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश है ये गाना, फ्रेश है, फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर ये गाना।

Radio Olive, your happiness frequency.

0: कतर का बिगेस्ट जिम ब्रांड अब आ रहा है और भी पावरफुल अंदाज में. फाल्कन फिटनेस हेल्थ क्लब प्रेजेंट्स इट्स सिक्स ब्रांच ग्रैंड इनोवेशन एट बेनोम रान. इस ग्रैंड ओपनिंग को और भी स्पेशल बनाएंगे सेलिब्रिटी गेस्ट शेन निगम, अन्ना राजन, सिया सलीम और रोशन बशीर. ज्वाइन कीजिए इस फ्राइडे जून 5th शाम 6 बजे. फाल्कन फिटनेस बेनोम रान, वन फैमिली वन मिशन अनस्टॉपेबल.
1: मॉर्निंग्स एंड नाइट

0: The local train से दिल मेरे beautiful track only on radio on 106.3 FM. Tanisha आगे जी आके साथ all the recharge लेकर a very good afternoon मेरी जन. And I know आज तो बिल्कुल दिल कर ही नहीं रहा होगा ऐसे office वापस आके काम वाम करने का. Same feelings bro, same. But करना तो है. So, अभी मैं आ गई हूँ आपके साथ, तो आपकी जो आफ्टरनून है वो तो फुल ऐसी एनर्जी से भर देंगे. बहुत सारी बातें करनी है, बहुत कमाल कमाल के गाने जरा सुनो आप.
1: काली तेरी चोटी है परांदा तेरा लाली, वो रूप दियो रानी तू परांदे को संभाल.
0: हाँ जी ये वाला भी है. Absolutely love this track. I mean, there's something about the music, the lyrics. It's beautiful.
2: Jaldi hai tum kahan pe? Dekho yahan ke raston mein.
0: Ye to bahut zyada sundar hai yaar.
3: Zara behakta hai aaj to mera tan.
0: मौसम तो हमें राहत नहीं दे रहा है, पर ये गाना जरूर दे देगा. यू नो ऐसे ठंडी बारिश वाली जो फील्स आ जाती है इससे, वो फीलिंग ही ले लो. अगर बारिश नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं. बाकी हाल चाल बताओ, हाउ वॉज योर हॉलीडेज, कैसे स्पेंड किए, ईद का सेलिब्रेशन कैसा रहा, सब जानना चाहती हूँ. 3311 1063 पर मैसेज किए और साथ में ये भी बताइए कि आज का दिन कैसा जा रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं, व्हाट्स द वाइब और द मूड ऑफ दिस संडे मे 31st, हफ्ते का जो पहला दिन और महीने का आखिरी दिन. वाह, बताइए मुझे फटाफट से. मैसेज कीजिए 3311 1063 पर और यू कैन कॉल 4444 1063 पर. स्टे ट्यून्ड ऑन जियो वंदास.

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Hi, this is Amitabh Bachchan and you're listening to...

0: Love our Gaza give us me good news. A beautiful track dil na chahne only on radio 106.3 FM. Tanisha aapke saath. All every chart chal rahe hain yahan par aur ek bahut bahut zaruri baat bolne wali hu main kyunki ye hum sab chahte na chahte hue kar hi dete hain zindagi mein. Kuch bhi ek chota mota bada bhi problem agar aa gaya socho life mein to hum us pe utna zyada zoom in kar dete hain, us pe itna zyada focus dal dete hain कि हमारे पास जो और हजार ब्लेसिंग्स है उसे इग्नोर कर देते हैं एंड देन वी डिफाइन दैट वन प्रॉब्लम कि भाई मेरी तो लाइफ ही खराब हुई है. ऐसे नहीं होता है यार. अगर एक प्रॉब्लम हुई है तो जो दस और ब्लेसिंग्स और अच्छी चीज़ें हैं पॉजिटिव चीज़ें हैं लाइफ में उस पर फोकस करो तो वो प्रॉब्लम इतनी छोटी लगेगी ना, लगेगा यार इट डजंट डिजर्व माई अटेंशन एंड दैट विल मेक योर लाइफ ईजियर मेरी जान. सो प्लीज़ ट्राई एंड डू दैट. आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग दैट एंड इट इज़ वर्किंग. येस ऑन दैट नोट सेंडिंग कूल सॉन्ग ऑफ द आवर फॉर यू. स्टे ट्यून्ड एंड ड्रिवन दिस
1: कूल सॉन्ग
0: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना Cool song of the hour.
2: क्या बात है सर? क्या बात ये बात है?
1: Cool song.

0: Danisha.
1: You're listening to Radio 106.3 FM. Danisha, आपके साथ Olive Richard चल रहे हैं यहाँ पर बॉम्बे जयशु की आवाज में. रहना है तेरे दिल में मूवी से बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक सा गाना इस चिलचिलाती धूप में सुना आपने. और एक बहुत बढ़िया काम हो गया है, कतर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन ने आपके लिए आसान कर दी है चीजें. जी हाँ, दे हैव लॉन्च्ड अ न्यू डिजिटल सर्विस वेयर इज माई सेंटर, एंड उस पर जाकर आप अपने सेंटर सर्च कर सकते हैं. You have option, आप सेंटर का नाम डाल सकते हैं, आपको you know proper details उसके location के साथ सब कुछ पता चल जाएगा वहाँ पे, या फिर आप type of education या फिर training activity you're looking for आप वो डाल के search कर सकते हैं, और किस municipality में है वो देख सकते हैं, किस district में है, किस residential area में है, ये सारे options हैं आपके पास. And you can easily locate up to 182 licensed education and training centers through this प्लेटफॉर्म, एंड दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग. और चीजें काफी फीजिबल हो जाएगी, ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है. बस जाओ, लिखो क्या चाहिए, सर्च करो और लोकेशन भी मिल जाएगी क्योंकि वो गूगल मैप से इंटीग्रेटेड है. हाँ जी, तो चेकआउट कीजिएगा एंड फिलहाल भेजो एक बहुत बढ़िया गाना. सुधरे रेडियो जियो बिंदास मेरी जान.

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
2: ओनली लगा और हो जा रिचार्ज. ओनली रिचार्ज.
3: ओनली रिचार्ज. रेडियो ओलिव 106.3 एफएम पर. जियो बिंदास.
2: ओनली रिचार्ज.
4: This hour is brought to you by
5: Shine Smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
6: Commercial Bank, where saving more turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream. Dream bigger.

0: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन।
1: हाय, दिस इज विपाशा बासु।
2: हाय, मैं राजकुमार राव।
3: हाय, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा।
4: हाय, दिस इज दिशा पार्डी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो 106.3 FM।

0: Danisha.
1: You're listening to Radio 106.3 FM. Danisha, आपके साथ ऑल रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर. और भाई मार्च 3 को जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने कहा था कि जो भी यू नो टेम्परेरी वीज़ा पर हैं, एंट्री वीज़ा पर हैं, और अगर वो एक्सपायर होने वाला है तो स्ट्रेस मत लो, हम एक्सटेंशन दे देंगे. पर अब उन्होंने कहा है जून 7 इज़ द डेडलाइन. अगर आपका जो वीज़ा है इस प्रोसेस में चल रहा था कि भाई एक्सटेंशन मिल रहा था खुद ही, अब नहीं मिलेगा. आइदर यू हैव टू यू नो गो एंड गेट इट एक्सटेंडेड, पे अ फी और समथिंग, और जो भी प्रोटोकॉल है वो सब आपको फॉलो करना पड़ेगा. सो प्लीज़ चेक आउट कीजिए, कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए. आप सलामत रहें, आप सब ठीक रहे, आपके साथ यही गोल रहता है यार, इसलिए मैं बता देती हूँ आपको ये चीज़ें. परवाह करती हूँ यार आपकी, हैं जी. सो जरा ध्यान रखिएगा. फिलहाल भेजी हूँ फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर फॉर यू. स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास मेरी जान.
0: Radio Olive Park. Fresh, fresh, fresh, fresh, fresh. Yeah, Ghana, fresh. Fresh song of the hour. Yeah, Ghana.

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: नींद के बादलों के पीछे है मुस्कुराता हुआ कोई चेहरा, चेहरे पर बिखरी एक रेशमी लट, सरसराता हुआ कोई आंचल और दो आंखें हैरान हैरान सी।

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha आपके साथ ओलिवी जॉर्ज चल रहा है यहाँ पर. और मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने एक हैंड हाइजीन एंड इन्फेक्शन प्रिवेंशन कैंपेन किया था अभी. और इट इज़ बेसिकली यू नो टू अवेयर पीपल अबाउट हैंड हाइजीन और इन्फेक्शन इन्वेंशन प्रिवेंशन हो रहा था मेरा इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रैक्टिसेस को फॉलो करें लाइफ में सो दैट आपकी हेल्थ सही रहे. और इससे मुझे याद आया कि डूड कोविड के बाद से पीपल हैव बिकम सो फिनिकी. मैं तो अभी तक सैनिटाइजर साथ लेकर घूमती हूँ एंड देर आर स्टिल पीपल जिन्होंने उस वक्त पे हैबिट डाल ली थी ना, जैसे सिमरन. आई हैव नोटिस्ड वो अभी भी अपने यू नो हाथ से ऐसे फिंगर से टच करके लिफ्ट का बटन नहीं प्रेस करती हैं बिकॉज वो एक बैठ गया है नोशन दिमाग में, यू नो. एंड इट इज़ नॉट अ बैड हैबिट, इट इज़ अ रियली गुड हैबिट. तो अगर आप भी वैसे ही हैं, ऐसी कोई आदत आप भी कोविड के बाद से साथ लेकर चल रहे हैं जो कि आपकी हेल्थ को बहुत हेल्प कर रही है, प्लीज शेयर कीजिएगा 3311 1063 पर. फिलहाल भेज रही हूँ जबरदस्त हिट योर वे, स्टे ट्यून्ड ऑन रेडियो बिंदास.
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट.

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha, आपके साथ Olive Recharge चल रहा है यहाँ पर और करण जौहर डिजिटल डिटॉक्स पे चले गए हैं पर पार्शियली. जब आप डिजिटल डिटॉक्स करेंगे तो क्या करेंगे, आप सोशल मीडिया नहीं चलाएंगे कुछ दिन के लिए. पर नहीं, he decided कि मैं कुछ लोगों को अनफॉलो कर दूंगा, दैट इज माई डिटॉक्स एंड मेनली पीपल फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री. यस, उन्होंने सबको फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री, यू नो, बॉलीवुड से अनफॉलो कर दिया है. इवन शाहरुख खान को भी अनफॉलो कर दिया है, बस एक प्रियंका चोपड़ा को वो अभी भी फॉलो कर रहे हैं. एंड देन रेस्ट अदर पीपल आर देयर हु आर नॉट रियली पार्ट ऑफ दैट एक्टर फ्रिटर्निटी एंड दैट इज वेरी शॉकिंग बिकॉज प्रियंका के साथ तो काफी क्रेजी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी एंड ही स्टिल फॉलोइंग हर. तो अलॉन्ग विद दैट, जो पुराने गाने उठाकर उनके साथ टॉर्चर किया जाता है क्योंकि कुछ नया नहीं लेकर आ पा रहे हैं, तो जो वरुण धवन की मूवी आ रही है जवानी तो इश्क होना है, वो भी गाने में से उठाया है डेविड धवन साहब ने अपनी ही मूवी के, वैसे ही एक गाना उठा लिया चुनरी चुनरी बीवी नंबर वन से. व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रैक, मजा आ जाता है सुन के यार, अलग वाइब अलग एनर्जी. और उसका रीमेक कर दिया है. यस, जी ये किया है उन्होंने और अभी कुछ देर में सुनाऊंगी आपको. लेकिन बात ये है, डेविड धवन को वासु भगनानी साहब ने 400 करोड़ के लिए सू कर दिया है बिकॉज उन्होंने बिना परमिशन के ये गाना उठा के अपनी मूवी में डाल लिया, रीमेक कर लिया. लो जी, गाना तो अब हिट हो ही जाएगा, कॉन्ट्रोवर्सी जो चिपक चुकी है इसके साथ. वेल, ये गाना तो आप सुनोगे ही, उसके साथ में एक ये खूबसूरत गाना भी भेज रही
2: हूँ,
1: बहुत ही सुंदर है यार. तो आइए एंजॉय करते हैं, स्टे ट्यून्ड ऑन जियो बिंदास
3: रेडियो ऑल.

0: Tanisha.
1: Tanisha. You're listening to Radio 106.3 FM. Tanisha आपके साथ और रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर. And indeed, life is crazy. एक तरफ तो आप ऐसे छुट्टियाँ लगातार enjoy कर रहे होते हो और फिर अगले ही दिन उठते ही आज ऑफिस आना पड़ा है ना. आई कैन फील द पेन यार.
2: ये है चलती फिरती डिक्शनरी.
1: सो आज का जो वर्ड है मेरी डिक्शनरी से जो मैं उठा कर लाई हूँ वो बहुत ही प्यारा वर्ड है. एंड द वर्ड इज वॉरफ्रॉइड. यस, वी ओ आर एफ आर ई यू डी ई, वॉरफ्रॉइड. सो इट कम्स फ्रॉम टू डिफरेंट वर्ड्स, दोनों को मिलाकर इस वर्ड को बनाया गया. और इसका मतलब होता है जॉयफुल एंटिसिपेशन. बेसिकली यू नो किसी चीज़ का जब आप बहुत ज़ोर से इंतज़ार कर रहे होते हैं एंड यू नो कि अरे ये तो अब होने ही वाला है. लाइक फ्यू पीपल आउट देयर जिन्हें ऑफिस आने की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि अरे छुट्टियाँ खत्म हो जाए जल्दी से यार ऑफिस जाना है. बहुत कम ही होते हैं ऐसे. पर या जो भी थे उनकी जो वो एक्साइटमेंट थी ना, दैट इज वॉरफ्रॉइड. यस. एंड जो दो वर्ड्स को मिलाकर ये बना है दैट इज वॉर, वी ओ आर, जिसका मतलब है बिफोर या फिर इन एडवांस, जिन्हें पहले से ही खुशी हो रही थी. एंड फ्रॉइड इज जॉय. दैट्स हाउ वी गेट वॉरफ्रॉइड. तो आप मुझे बताइए, देखो ऑफिस जाने की तो वॉरफ्रॉइड फीलिंग नहीं होगी आपकी, आई नो दैट फॉर श्योर. तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं लाइफ में जिनके लिए दिस वॉरफ्रॉइड वाली फीलिंग है आपको कि यू नो पहले से एंटिसिपेशन होता है कि यार लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस. What are those things in life? I want to know that. 3311-1063 पर बताइए मुझे. फिलहाल सुनते हैं मस्कारा. मैं वापस आऊंगा से. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

0: Tanisha.
1: Drama queen, हंसी तो फंसी मूवी से बहुत ही बढ़िया गाना only on radio, Olive 106.3 FM, Tanisha आपके साथ. Olive recharge चल रहा है यहाँ पर. And लो भाई ये Instagram ना, ये नहीं हमें जान से जीने देता ना जी ना, गलत गलत चीजें कर रहा है हमारे साथ. So if you have noticed, जब Instagram पे आप कोई रील शेयर कर रहे होते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, तो आपको सबकी लिस्ट आ जाती है, राइट? वहां पर देन आप सिलेक्ट करते हो, देन देर आर टू ऑप्शंस. या तो आप इंडिविजुअली भेज सकते हो या फिर नीचे ग्रुप बन जाता है, ठीक है? तो ये ग्रुप वाली गलती हम सबसे हो चुकी है एक आधी बार. तो मैं तो बहुत पछताई गलती से. मैंने यहाँ से सुदेव और यू नो मेरी कॉलेज की एक फ्रेंड, इन दोनों को भेज रही थी मैं कोई चीज़ और ग्रुप हो गया. आई थिंक 5 मिनट लगे होंगे मुझे ये फिगर आउट करने में कि मैंने ग्रुप बना दिया है और इतने मैसेजेस मुझे इसीलिए आ रहे हैं. और उस 5 मिनट में जब तक मैंने इन्हें रिमूव किया है वहाँ से, इतनी बातें कर ली हैं मेरे बारे में इन दोनों ने, इतना मजाक उड़ा लिया है. एंड आई वॉज लाइक अब हमेशा चेक करके ही मैं यू नो सेंड करूँगी. सो अर्लियर क्या होता था, जब भी आप इस तरह से ग्रुप वाले ऑप्शन पे गलती से क्लिक कर दो ना, तो वो आपसे एक बार पूछता था, कन्फर्मेशन मांगता था, यू श्योर यू वॉन्ट टू मेक द ग्रुप. लेकिन नाउ वो कन्फर्मेशन वाला पॉपअप नहीं आता है, डायरेक्टली ग्रुप बन जाता है. ये चाहते हैं कि गलत हो हमारे साथ. जी हाँ, ये चाहते हैं हमें ऐसी सिचुएशंस में डालना. तो मेरी जान, आप सतर्क रहें, सावधान रहें, सो दैट मेरी तरह आपको भी पछताना ना पड़े. ठीक है, समझ रहे हो ना बात को? सेंडिंग हमने वहीं लगाया दिल जहां दिल लगाना मना था. देखो अच्छा तो लगता है. स्टे ट्यून्ड, एंजॉय बिंदास.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: कतर का बिगेस्ट जिम ब्रांड अब आ रहा है और भी पावरफुल अंदाज में फाल्कन फिटनेस हेल्थ क्लब प्रेजेंट्स इट्स सिक्स ब्रांच ग्रैंड इनोवेशन एट बिन उमरान इस ग्रैंड ओपनिंग को और भी स्पेशल बनाएंगे सेलिब्रिटी गेस्ट शेन निगम अन्ना राजन सिया सलीम और रोशन बशीर ज्वाइन कीजिए इस फ्राइडे जून 5th शाम 6 बजे फाल्कन फिटनेस बिन उमरान वन फैमिली वन मिशन अनस्टॉपेबल
2: हाय मैं हूं विवेक आनंद ओबेरॉय यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव जियो बिंदास
0: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
3: Olive laga aur ho ja recharge.
4: Olive recharge. Tanisha ke saath.
5: Olive recharge. RJ Tanisha ke saath. Radio Olive 106.3 FM par. Jio bindaas.
6: This hour is brought to you by
7: Shine Smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
8: Commercial Bank, where saving more turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream. Dream bigger.

0: Tanisha.
1: Manali Thakur ki awaaz mein sawar lu, beautiful track from the movie Lutera, only on Radio 106.3 FM. Tanisha aapke saath all every talk chal raha hai abar. Lame Jams ka aaj ka sawal hai ki aapne mujhe alphabets mein se ek aisa letter batana hai jo ki ek drink bhi hai. Yeah, you have to tell me a letter from the alphabets which is a drink also. Soto 3311063 पर मैसेज कीजिए या फिर कॉल कर दीजिए 4444106 पर. एक ऐसा लेटर जो कि ड्रिंक भी है. सेंडिंग कूल सॉन्ग ऑफ द आवर, फुल नॉस्टैल्जिक हिट एम्पलीफायर, और इस मौसम में तो परफेक्ट गाना है. जी हाँ, आई एंजॉय करते हैं. स्टे ट्यून ऑन जियो बिंदास मेरी जान. रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: बात है सर, क्या बात, ये बात है.
3: Cool song.

0: Radio Olive, your happiness frequency. Shackman ki power packed range, heavy trucks, tippers, trailers aur boom trucks. Damdar performance aur bharosa, sirf Carmel ke saath. Visit Carmel Group now.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक से and win.
3: Only laga aur ho ja recharge.
4: Olive recharge.
0: Olive recharge. Radio Olive 106.3 FM par. Jio bindaas.
4: Olive recharge.
5: This hour is brought to you by
6: Shine Smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
7: Commercial Bank, where saving more turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream. Dream bigger.

0: Tanisha.
1: क्योंकि और शान की आवाज में 10 बहाने भाई, ओरिजिनल तो ओरिजिनल होता है, ये तो बात है। क्या फील है इस गाने में यार। यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम, तनिषा आपके साथ ऑल ओवर रिचार्ज चल रहा है। अब लेम जैम्स का आज का मेरा सवाल था कि आपने मुझे ऐसा लेटर बताना है अल्फाबेट्स में से जो कि एक ड्रिंक भी है, एंड आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ आंसर्स ओवर हियर। राबिया जी का मैसेज आया, हेतल एंड मोहम्मद एंड अ लॉट मोर, लेकिन मैं एक मौका और देना चाहती हूँ। जी हाँ, एंड ऑलमोस्ट सबके आंसर सही हैं वैसे, यप यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, पर I want more people to come and participate in my lameness. So, one more chance for you, मेरी जान। बताइए मुझे ऐसा letter alphabets में से जो कि एक drink भी है। और यहाँ सामने TV पे मेरे तैयारी चल रही है final की। आज है final, होने वाला है Bangalore और Gujarat के बीच में। क्या लगता है कौन सी team ले जाएगी इस बार trophy? वैसे Bangalore फिर से finals में आ चुकी है, तो भाई इनका जो luck चल रहा है, तगड़ा ही चल रहा है। क्या बोलते हो आप, क्या विचार है आपका, बताओ मुझे 3311106 पर। एंड स्टे ट्यून्ड टू रेडियो ऑल ऑफ 107.3।

0: हाय, मैं हूँ सोहाली खान एंड यू आर लिस्टिंग टू रेडियो ऑलिव जियो बिंदास.
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

नेक्स्ट टाइम आप भी नोटिस करना, हेल्प मांग रही है यार वो। अभी मेरे दिमाग में आई है, यही चल रहा है यार। ओह माय गॉड, बीच में गई थी।

सिमरन कौर है आपके साथ, दुख दर्द पीड़ा ये सब कुछ आपको हुआ होगा जब आप आज सुबह उठने लगे होंगे। यार एक्चुअली हम सबकी हालत भी कुछ ऐसी ही थी, ऐसी लग रहा था यार यार ये छुट्टियां खत्म हुई, दो हमको नहीं मतलब छुट्टियां मिली, लेकिन हम फील ले लेते हैं। क्या होता है कि जब भी ऐसी ईद या फिर कोई छुट्टी होती है तो ऐसे टाइम पे हमारे लिए थोड़ा सा ईजी ये भी हो जाता है कि हम शो के टाइम पे आते हैं, उसके बाद हम चले जाते हैं, तो हमारे लिए भी छुट्टी वाला ही माहौल था। और आपका ये माहौल, हमारा ये माहौल जो हमने बनाया हुआ था ईद वाला, वो अब जा चुका है वापस से। अब तो आप लोग ऑफिस से वापस भी आ चुके होंगे, लेकिन मेरा जो है वो दिन एक्चुअली अभी शुरू हो रहा है। सो जबरदस्त इवनिंग्स भी शुरू हो चुका है, सिमरन कौर भी आ चुकी है। कैसी रही आपकी ईद की छुट्टियाँ, कैसा रहा आपका आज का दिन, बताइएगा 3311101।

0: बुरी बात है यार।
1: ओ मेरी जा तेरा यूं मुस्कुराना तो गलत बात है।
0: और अगर ये चार घंटे आपने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया, मुझे अटेंशन नहीं दी, तो वो गलत बात हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आपके मैसेजेस का इंतजार कर रही हूँ। सुनते रहिए रेडियो ऑलिव कोर, कहते रहिए जियो बिंदास, मुस्कुराइए क्योंकि आपकी हैप्पीनेस की फ्रीक्वेंसी को आप सुन रहे हैं।

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Shackman ki power packed range, heavy trucks, tippers, trailers aur boom trucks. Damdar performance aur bharosa. Sirf Carmel ke saath. Visit Carmel Group now.
2: Hi, main hu Divya Datta. And you're listening to Radio Olive Jio Bindas.
3: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian Radio Network.
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के साथ
5: This hour is brought to you by
6: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

जलन हो रही है मेरे मुस्कुराने से है? आपके साथ वैसे आज एक टीम मुस्कुराने वाली और उसके फैंस मुस्कुराने वाले हैं क्योंकि आज है फाइनल अहमदाबाद में गुजरात और बेंगलुरु के बीच में। ऑफकोर्स मैं गुजरात को सपोर्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरी दीदी का ससुराल है वहां पे, तो ठीक है कोई तो आपको मिलना चाहिए ना मौका कि आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। पंजाब तो नहीं है बट दैट्स ओके। सो यस, अभी के लिए जो टॉस था वो बेंगलुरु ने जो था वो विन किया था। वो कहते हैं कि भाई हम फील्डिंग करने वाले हैं, तो गुजरात अभी खेल रही है। 3.3 ओवर कंप्लीट होने का स्कोर हो गया 26 और पहला विकेट जो है वो जा चुका है। तो आप बताइए आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो 3311063 पर। आपका जो है प्रिडिक्शन क्या कहता है कि कौन सी टीम आज जीतने वाली है। आई नो आप लोगों का इश्क जो है वो क्रिकेट है, आप काम करते रहिए, अपडेट हम कर देंगे आपको।

0: सूरज चांद से याद आया, चांद जो है वो नीले रंग का दिखने वाला है। अगर अभी शाम हो रही है तो आपको वो नीले रंग का चांद जो है वो दिख गया ना, तो प्लीज मुझे वीडियोस बना के जरूर भेजिएगा और रेडियो ऑलिव को टैग करना मत भूलिएगा, हम रीशेयर करेंगे। सुनते रहिए रेडियो ऑलिव को और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: T20 स्कोर अपडेट presented by
2: Luke's Cafe, sweetness that hits straight to the heart. Dadar ki most loved kulfi ab bilkul paas. Madar Kadim Bakra VFS Global K site, Oak Banafi Metro Kick just next. Instagram pe follow karo and drop by today.
1: Brought to you by Ibad Sports, gear up, game on. All your sports needs at one place. Ibad Sports, brand of achievements. Contact 7733-9198.
2: Boundaries hit, flavors ignite. Ab har dish mein lagega desi swad ka tadka with Desi Dhaba. Taste ka real sixer. Desi Dhaba, Bin Mehmood, Tawar Mall and Mall of Qatar.
3: Ab suniye, Olive ka Zabardast hit.

0: 26 million reals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals cash prizes.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 reals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Iske swag pe munde jaate hain dil haar ke. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
4: सिमरन के साथ.
5: This hour is brought to you by
6: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

0: एक घंटे तक आपका मतलब 5 से 6 बजे तक हम लोग मतलब कि तुहाडे प्रोग्राम दा वेट रहे।
1: अरे यार थैंक यू,
0: बहुत वधिया प्रोग्राम है जी तुहाडा, अल्लाह तुहानू खुश रखे।
1: तुहानू भी अल्लाह खुश रखे, थैंक यू सो मच यार। ये जो आप इस तरह से बताते हो ना दिल की बात, बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं, आप सुनते रहते हो लेकिन कभी जताते नहीं हो, जब इस तरह से जताते हो तो अच्छा लगता है यार। अभी फिलहाल अच्छा नहीं लग रहा है हमको मौसम। हाँ जी, 38 डिग्री सेल्सियस अभी तक का टेम्परेचर एंड फील्स लाइक 38 डिग्री सेल्सियस। हाईएस्ट टेम्परेचर 42 था आज एंड मिनिमम टेम्परेचर होने वाला है 30 डिग्री सेल्सियस। विंड जो है 17 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से चल रही है। ह्यूमिडिटी 19% है। सो ये है मौसम के हाल। वापस लौट के मौसम के हाल के हिसाब से कतर में हर बार जो होता है वो अब भी होने वाला है, बताऊंगी क्या।

0: कतर का बिगेस्ट जिम ब्रांड अब आ रहा है और भी पावरफुल अंदाज में। फाल्कन फिटनेस हेल्थ क्लब प्रेजेंट्स इट्स सिक्स ब्रांच ग्रैंड इनोवेशन एट बिन उमरान। इस ग्रैंड ओपनिंग को और भी स्पेशल बनाएंगे सेलिब्रिटी गेस्ट शेन निगम, अन्ना राजन, सिया सलीम और रोशन बशीर। ज्वाइन कीजिए इस फ्राइडे जून 5th शाम 6 बजे फाल्कन फिटनेस बिन उमरान। वन फैमिली वन मिशन अनस्टॉपेबल।
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
2: सिमरन के साथ।
3: This hour is brought to you by
4: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

0: जी मैं हाँ हरभजन मान तुसी सुन रहे हो कतर हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM जियो बिंदास
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: नाचना भी आपको शेडो में, ठीक है, धूप में नहीं। चाहे जितना भी मर्जी तूफान भरा है, लेकिन वो जो तूफान है वो बाहर धूप में नहीं निकलना चाहिए आपका। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने अभी अनाउंस कर दिया, स्ट्रिक्टली अनाउंस कर दिया, कल से 1 जून से लेकर 15 सितंबर तक जो आउटडोर वर्क रहता है ना, वो आप नहीं कर सकते हो सुबह 10 से लेकर दोपहर के 3:30 के बीच में, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट होती है। और ऐसे टाइम पर ये चीज़ मुझे इतनी ज़्यादा बेस्ट लगती है ना कतर में, कि यार सबका ध्यान रखा जाता है यार, जो आउटडोर लेबर वर्क है, जो लोग बाहर काम करते हैं ऐसे टाइम पे, क्योंकि हीट इतनी ज्यादा है कि आपको बीमार कर सकती है यार। सो ध्यान रखने के लिए ये जो हर बार किया जाता है ना, बड़ा सही लगता है। तो कल से ही स्टार्ट हो रहा है, 15 सितंबर से ये खत्म होने वाला है। और बताए, जब भी ना ये 15 सितंबर आती है तो फिर फील आती है अरे मौसम बदलने वाला है। मैं तो ऑलरेडी तनीषा से बात कर रही थी, मैंने बोला यार कोई बात नहीं, जून आ गया, जून जुलाई, फिर अगस्त तो बर्थडे वाला महीना होता है, फिर उसके बाद माहौल सेट होना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो जाता है। तो हम अपने दिल को तसल्ली दे रहे हैं कि गर्मी है, अभी आई भी नहीं है ढंग से, लेकिन चली जाएगी। इसी तरह से लाइफ में पॉजिटिव रहने का। बट यस, अपना ध्यान रखिए, और जो लोग बाहर काम करते हैं वो तो अब इस ऑर्डर को फॉलो ही करेंगे, लेकिन आप भी अपने आप को फोर्स मत करिएगा। अगर बाहर काम नहीं है तो प्लीज बाहर मत निकलिएगा यार।
1: जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना, ओ सालिमा, ओ सालिमा।
0: बेटा तड़पा तो आपको धूप देगी। सुनते रहो रेडियो ऑलिव को।

0: Presents CB 2026 Million Reals Dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.

साहब क्या धुरंधर आवाज है यार जैस्मिन की। सिमरन कौर आपके साथ मैच में थोड़ा एक्शन चाहिए दोस्त, सिक्सर लगा है जबरदस्त।

0: एक नंबर गाने आप लोगों के लिए चल रहे हैं। एक नंबर मैच है, फाइनल मैच है, अहमदाबाद में खेला जा रहा है गुजरात एंड बेंगलुरु के बीच में, और गुजरात को थोड़ा सा एक्शन करने की जरूरत है दोस्त। 12.4 ओवर कंप्लीट होने के बाद स्कोर हो गया 81 और 4 विकेट ऑलरेडी जा चुके हैं दोस्त। तो बताओ आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो, आपको क्या लग रहा है कि आज कौन सी टीम जीतने वाली है? 3311063 पर आप मुझे बता सकते हैं। और गुड वाली इवनिंग है जी, क्या कर रहे हैं आप? बाहर की गर्मी, ओ माई गॉड, पानी पी लो यार, कब से पानी नहीं पिया आपने? वाटर रिमाइंडर दे रही हूँ आपको।
1: T20 score update presented by
2: Brooks Cafe, sweetness that hits straight to the heart. Dadar ki most loved kulfi ab bilkul pass. Madar Kadim Bakra VFS Global ke site, Oak Banafi Metro ke just next. Instagram pe follow karo and drop by today.
1: Brought to you by Ibad Sports. Gear up, game on. All your sports needs at one place. Ibad Sports, brand of achievements. Contact 7733-9198.
2: Boundaries hit, flavors ignite. Ab har dish mein lagega desi swad ka tadka with Desi Dhaba. Taste ka real sixer. Desi Dhaba, Bin Mehmood, Tawar Mall and Mall of Qatar.

0: हां जी और स्कोर जो है वो आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो गुजरात और बेंगलुरु का मैच चल रहा है, गुजरात अभी खेल रहा है 14.5 ओवर कंप्लीट होने के बाद स्कोर हो गया है 104 और 5 विकेट ऑलरेडी जा चुके हैं। सो यार थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे प्रेयर के बाद।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدنا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Radio Olive, your happiness frequency.
2: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31 मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ.
5: This hour is brought to you by
6: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

0: बताने वाली हूँ जो कि आप ना करते रहेंगे बार बार, मैं अभी वही चीज कर रही हूँ और बड़ा मजा आ रहा है।
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ
0: ये बात है। आजकल हम दोस्तों का और जो भी आपके क्लोज हैं और उनके साथ आपका रिश्ता कैसे कायम रहता है, आप कॉल नहीं करते हो, आप मैसेज नहीं करते हो, आप बस रील भेजते रहते हो, राइट। जब हम एक दूसरे को रील भेजते हैं, हमें कोई चीज, बहुत सारी रील्स जो है वो बहुत ज्यादा फनी लगती हैं, राइट, और कुछ कुछ रील्स हमें इतनी अच्छी लगती है तो हम आपको पता है कि आप उन सारी रील्स के स्टिकर्स भी बना सकते हो। सो आपको अभी कभी मैं स्टिकर बनाना सिखाती हूँ, बहुत ईजी है, एक ही सेकंड का काम है। सो मान लीजिए आपने कोई रील देखी, उसमें आपको कोई कैरेक्टर अच्छा लगा, उस चीज का आप स्टिकर बनाना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले रील पे जाइए, रील के ऊपर आपने क्लिक करना है। रील के ऊपर जैसे ही आपने क्लिक किया, आपको एक स्टिकर का ऑप्शन जो है वो आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने उस पर करके देख रही हूँ। सो आपने जैसे ही रील के ऊपर क्लिक किया तो आपको दिखेगा मेक अ स्टिकर, तो मेक अ स्टिकर पे आएंगे, आपको जो भी पोर्शन उस रील का अच्छा लग रहा है उस पे क्लिक करिए, वो स्टिकर आपका साथ की साथ बन जाएगा। मैंने अभी बैठे बैठे 10 स्टिकर जो हैं वो उसके बना दिए हैं, बड़ा मजा आ रहा है, आप भी ट्राई करके देखो। और लैला से याद आया, बहुत सारी रील जो है ना वो वायरल हो रही है, जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं, जहाँ पे लैला फिल्म की शूटिंग हुई थी, जिसमें लैला, जिस घर में लैला रहती थी, उस घर को ढूंढ के लोग वीडियोस बना रहे हैं। यार स्वीट, हाँ।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
3: द बिग biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
4: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे,
6: आरजे सिमरन के साथ।
7: This hour is brought to you by
3: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

0: हां जी बजके ऑलमोस्ट 49 मिनट स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं। तैयारी बड़ी प्यारी चीज जो थी ना वो थोड़े दिन पहले मैंने पढ़ी तो
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ
0: उसमें लिखा था, कहते कि जिसे सब बताया उसी ने सबसे कम समझा। कभी कभी आप किसी इंसान को अपने बहुत करीब समझते हो और आप सोचते हो कि यार जितना भी मेरे दिल्ली जिंदगी में या दिल में जो भी सिचुएशन चल रही है मैं बोलूंगी ना उससे तो मतलब वो समझेगा, वो सुनेगा या सुनेगी या समझेगी, है ना। लेकिन कभी कभी इसके बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है कि जिसको आप सब कुछ बता रहे हो यार पर वो कम समझता है, वो समझता ही नहीं उन सारी चीज़ों को। वो एक रैंडम इंसान जिसको आप बताते हो वो ज्यादा आपकी बात जो है वो समझ जाता है। कभी कभी हम सब की लाइफ में होता है लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए यार, बड़ा दुख होता है क्योंकि जिस इंसान को आप सब समझते हो उसी को तो सब बताते हो यार, फिर वो आपको कुछ ना समझे दिक्कत हो जाती है यार।
1: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर ये गाना
0: कॉकटेल 2 का ये गाना है, मतलब अरिजीत सिंह, ओ माय गॉड। मैं वीकेंड पे इस गाने को सुन रही थी, मतलब अरिजीत सिंह का जादू ही अलग है। तो उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग बंद कर दी थी तो आई गेस उन्होंने पहले से साइन करके रखा होगा इस गाने को, फिर से एक जादू जो है वो फील हो रहा है यार। 3, 2, 1 एंड गो।

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
2: शैकमैन की पावर पैक्ड रेंज, हेवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स. दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ. विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ.

0: सुने हो कि दादी हलचल सत श्री अकाल सिमरन कौर आपके साथ। और यस, फाइनल मैच अहमदाबाद में चल रहा है गुजरात और बेंगलुरु के बीच में। गुजरात ने अपनी पारी खेल ली है और 156 का टारगेट जो है वो दिया है, 156 रन का टारगेट जो है वो मिला है बेंगलुरु के लिए। मैच जो है वो थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाला है, मैं आपको सारी अपडेट देने वाली हूँ। इंडाइजेशन हो गया होगा, पानी पी लो, दिल परेशान होगा तो ठीक हो जाएगा। गर्मी में जब आप बहुत ज्यादा मसालेदार खा लेते हो तो आपका दिल परेशान हो जाता है यार, तो बहुत सारा मसाले वाला भी नहीं खाना है। ऐसी आपको याद दिला रही, थोड़ी सी ईटिंग हैबिट्स अपनी इस गर्मियों में चेंज कर लो। सुनते रहो रेडियो ऑलिव को और कहते रहो चियो बिंदास।
1: T20 स्कोर अपडेट presented by
2: Brooks Cafe. Sweetness that hits straight to the heart. Dadar ki most loved kulfi ab bilkul paas. Madar Kadim Bakra VFS Global ke site Oak Banafi Metro ke just next. Instagram pe follow karo and drop by today.
1: Brought to you by Ibad Sports. Gear up, game on. All your sports needs at one place. Ibad Sports, brand of achievements. Contact 7733-9198.
2: Boundaries hit, flavors ignite. Ab har dish mein lagega desi swad ka tadka with Desi Dhaba. Taste ka real sixer. Desi Dhaba, Bin Mehmood, Tower Mall and Mall of Qatar.

0: presents CB 2026 million reals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals cash prizes.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 reals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और Mega draw ticket.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: This is Amaya Dastoor on Radio Olive 106.3 FM, Jio Bindas.
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
5: आरजे सिमरन के साथ.
6: This hour is brought to you by
7: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

गाने की तरह हमारी सबकी लाइफ में भी कभी कभी ऐसा होता है कि मिलिया पर मैनू जाने नहीं मिलता जाता है कोई इंसान, पर आपको उतना जान और समझ नहीं पाता है। 7:23

0: टॉक्सिक हो रखी है लड़की, आई हेट यू लाइक आई लव यू बेबी। ओके फाइन, अभी फिलहाल के लिए हम सब जो है खांसी कर लूं। आगी। सो या मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की बात करें, हम सबको जो है वो गोल्ड से डायमंड से बहुत ज्यादा प्यार है, क्योंकि हमको पता है ये जो गोल्ड की बात करें ना, बढ़िया तगड़ी इन्वेस्टमेंट है अपनी लाइफ में। सो अगर आपको लग रहा है कि आपने ज्वेलरी खरीदी थी अपने लिए और पहनने के लिए खरीदी थी, लेकिन अभी वो डिजाइन पुराना हो चुका है, आप हर जगह ही वही पहन के चले जाते हो, सो आप एक काम करिए, अपनी ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी को आप एक्सचेंज करवा लीजिए, क्योंकि नए नए डिजाइन आ चुके हैं, तो नए नए डिजाइन के साथ आप जो है वो अपनी ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज करवा के सिर्फ मेकिंग चार्जेस जो है वो पे करके करवा सकते हैं। उसके साथ साथ आप जो है वो इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया, इसकी वजह से आप 15% गोल्ड प्राइजेस पर सेव भी कर सकते हो, सो आपका फायदा ही फायदा है। मेक श्योर कि आप इसका नजायज फायदा उठा लीजिए, ठीक है। सिमरन गौर आपके साथ, जय अविनाश।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है,

सुन ले दिल रुबा, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू आप सबके मैसेजेस के लिए। एक नंबर तो अभी आपके लिए क्या है आज मेरे पास, जेंजी लिंगो को हम जो है डिकोड करते हैं। गैग्ड एक वर्ड होता है, जिस ये इसलिए यूज किया जाता है जब आप शॉक्ड हो जाते हैं। शॉक्ड वर्ड के लिए आप जो है गैग्ड वर्ड जो है वो यूज करते हैं। जब आपके पास शब्द नहीं होते, यू आर अमेज्ड, मतलब आप क्या बोलेंगे, तो उसमें उनके उस केस में इस वर्ड को जो है वो यूज किया जाता है। थैंक यू सो मच।

0: कतर का बिगेस्ट जिम ब्रांड अब आ रहा है और भी पावरफुल अंदाज में। फाल्कन फिटनेस हेल्थ क्लब प्रेजेंट्स इट्स सिक्स ब्रांच ग्रैंड इनोवेशन एट बिन उमरान। इस ग्रैंड ओपनिंग को और भी स्पेशल बनाएंगे सेलिब्रिटी गेस्ट शेन निगम, अन्ना राजन, सिया सलीम और रोशन बशीर। ज्वाइन कीजिए इस फ्राइडे जून 5th शाम 6 बजे फाल्कन फिटनेस बिन उमरान। वन फैमिली वन मिशन अनस्टॉपेबल।
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
2: आरजे सिमरन के साथ।
3: This hour is brought to you by
4: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

0: सुनियो कि दादी हाल चाल सत श्री अकाल सिमरन कौर है आपके साथ। आज का मैच बड़ा जबरदस्त है क्योंकि फाइनल मैच है अहमदाबाद में खेला जा रहा है गुजरात और बेंगलुरु के बीच में और गुजरात ने पहले खेलते हुए 156 रन का टारगेट दिया है और बेंगलुरु ने आते ही मस्त खेलना स्टार्ट किया है। 5.1 ओवर कंप्लीट होने के बाद स्कोर हो गया 63 और दो विकेट ऑलरेडी जा चुके हैं। सो टेक्निकली 89 बॉल्स में 93 रन्स जो है वो बनाने हैं। भाई साहब बड़े मजे आने वाले हैं इस मैच में। लेकिन ऑफ कोर्स आप लोग प्रेडिक्ट करके बताइए आपको क्या लग रहा है कि कौन जीतने वाला है आज। मैच में जो है वो मजा आ रहा है लेकिन अभी आप कहां पे मजे कर रहे हो क्या कर रहे हो। देखो यार ब्लू मून भी है आज। वो कहते हैं कि ब्लू तो नहीं दिखने वाला लेकिन नाम इसका ब्लू मून है। आई रिमेम्बर 2 साल पहले जो था वो 2 या 3 साल पहले आई गेस ब्लू मून था एंड मैंने उसको अपने कैमरा में कैप्चर किया था। एकदम ब्लू रंग जो था सुपर ब्लू मून था तब वो देखा था मैंने। बड़ा अमेजिंग था यार। लेकिन अगर आप अभी मून देख रहे हैं और रेडियो ऑलिव को भी सुन रहे हैं तो फिर बैकग्राउंड में मस्त म्यूजिक रेडियो ऑलिव का चले और चांद कैप्चर करके जो है वो आप मुझे वीडियो भेजो एंड उसके साथ साथ आप रेडियो ऑलिव को टैग भी कर सकते हो तो हम रीशेयर कर लेंगे यार। सिमरन गौरी आपके साथ जी हो बिंदास।
1: Presented by Luke's Cafe. Sweetness that hits straight to the heart. Dadar ki most loved kulfi, ab bilkul pass. Madar Kadeem, Vakra, VFS Global K site, Oak Banafi, Metro Kick just next. Instagram pe follow karo and drop by today.
2: Brought to you by Ibad Sports. Gear up, game on. All your sports needs at one place. Ibad Sports, brand of achievements. Contact 7733-9198.
1: Boundaries hit, flavors ignite. Ab har dish mein lagega desi swad ka tadka with Desi Dhaba. Taste ka real sixer. Desi Dhaba, Bin Mehmood, Tawar Mall and Mall of Qatar.

0: Radio Olive, your happiness frequency. 106.3 Radio Olive, Geo
1: Bindas. Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडो ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Hi, this is Kailash Kher, and you are listening to Qatar's first Hindi radio station, Radio Olive.
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
5: आरजे सिमरन के साथ.
6: This hour is brought to you by
7: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

बहुत इंपॉर्टेंट मैच जो है वो चल रहा है आज, फाइनल है गुजरात और बेंगलुरु के बीच में, और बहुत ही मतलब स्कोर मुझे था कि काफी ताबड़तोड़ खड़ा करते तो ज्यादा मजा आता, बट यस गुजरात ने पहले खेलते हुए 156 रन का टारगेट दिया है और अभी सीन ये है कि 52 बॉल्स पे 43 रन जो है वो जीतने के लिए चाहिए, 4 विकेट ऑलरेडी जा चुके हैं, यानी कि 11.2 ओवर कंप्लीट होने के बाद स्कोर हो गया है 113। सो या कुछ भी हो सकता है, जो भी होगा कोई बात नहीं है, स्कोर अपडेट्स मैं आपको दूंगी, मजा आ रहा है ना। क्रिकेट चीज ही ऐसी है, क्रिकेट लवर को बड़ा मजा आता है।

0: सजदा करना जरूरी है यार। ओके, सो थोड़ी देर में नेम गेम जो है वो खेलने वाली हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम मैं रेडियो पे बोलूं। सो डार्लिंग, आप एक काम करिएगा, अपना नाम टाइप करिए रखिएगा, जैसे ही आप मुझे बोले वैसे ही, मतलब जैसे ही मैं आपको बोलूं वैसे ही आप मुझे अपना नाम लिख के व्हाट्सएप कर देना, ठीक है? आ रही हूँ बस थोड़ी देर में।
1: Presented by Brooks Cafe. Sweetness that hits straight to the heart. Dadar ki most loved kulfi, ab bilkul pass. Madar Kadeem, Vakra, VFS Global K side, Oak Banafi, Metro Kick just next. Instagram pe follow karo and drop by today.
2: Brought to you by Ibad Sports. Gear up, game on. All your sports needs at one place. Ibad Sports, brand of achievements. Contact 7733-9198.
1: Boundaries hit, flavors ignite. Ab har dish mein lagega desi swad ka tadka with Desi Dhaba. Taste ka real sixer. Desi Dhaba, Bin Mehmood, Tawar Mall and Mall of Qatar. Awesome. Radio Olive par. Aane wala gaana, cool song of the hour.
3: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

विशाल मिश्रा, ब्यूटीफुल जी। मैं कहीं सुने की दादी हलचल, सत श्री अकाल, सिमरन कौर है आपके साथ। बेंगलुरु जो है जीत की तरफ बढ़ता हुआ, यार मैं गुजरात को जिताना चाहती हूँ, क्यों नहीं समझ रहे हो यार। 40 बॉलों पे 29 रन जो है वो बनाने, 4 विकेट जा चुके हैं, लेकिन हम फोकस आप पे भी करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका नाम अभी के अभी रेडियो पे बोलूं, तो आपको मुझे अभी के अभी अपना नाम बताना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आपका नाम नहीं पता है दोस्तों। 3311063 पर, जी हाँ, 3311063 पे, इस पे सिर्फ और सिर्फ अपना नाम जो है वो लिख के भेजिए फटाफट से। मैं आप लोगों के नाम बोलने जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ। सभ्या, जुल्फी, शशिकांत, नजीमुल्ला, अरमान, सुनीता, मोहम्मद यूसुफ, परशुराम, शिव, आयत, उमर, फारा चांद, विनय, मजबूल, जावेद, आसमा, वृशाली, हमजा, आजम, मोहम्मद जी थैंक यू सो मच, फातिमा यूसुफ ऑलरेडी बोल दिया, आयत जी थैंक यू सो मच, इंतशार जी थैंक यू सो मच, उमर जी थैंक यू सो मच, अब्दुल जी थैंक यू सो मच, रोशन जी थैंक यू सो मच, अनिसुर रहमान जी, खजर हयात खान जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए दोस्त। क्विकली हबीब जी थैंक यू सो मच, 3311063 पर सिर्फ और सिर्फ नाम। वृषिक जी थैंक यू सो मच, के पी जी थैंक यू सो मच, थैंक यू दोस्तों, अभी मत लिखो, थैंक यू, लिखने के लिए बड़ा सारा टाइम पड़ा है। कार्तिक जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, रहमान जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, सूरज जी थैंक यू सो मच, हबीब जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, यस मैं जी बोल रही हूँ, क्या बात है, हंसी क्यों आ रही है यार। निर्मल जी थैंक यू सो मच, नीलेश जी थैंक यू सो मच, सिर्फ और सिर्फ अपना नाम लिख के भेज दीजिए और कुछ मत लिखिए। जैन जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, रेशम जी थैंक यू सो मच, एंड दैट्स इट फॉर नाउ। जिन जिन लोगों के मैंने नाम ले लिए, अब आप थैंक यू लिख सकते हैं और साथ में अपना फेवरेट वाला इमोजी भेज देना बस।

हंसी तो फंसी से आप बहुत ही प्यारा गाना सुन रहे थे यार। सिमरन कौर की ऐसी गली माने का टाइम आ चुका है, लेकिन जाते जाते मैच का हाल मैं आपको बता देती हूँ। रिजल्ट आपको ऑलमोस्ट अब पता लग ही जाएगा। 18 बॉलों पे 8 रन चाहिए जीतने के लिए बेंगलुरु को। सो या 5 विकेट ऑलरेडी जा चुके हैं। अब सिमरन कौर भी जाने वाली है, लेकिन जाने से पहले शो के आखिरी दो

0: वापस आऊंगा से ये गाना है एकदम फ्रेश।
1: जो था
0: चलो कल शाम को 5 बजे फिर से होती है आपसे मुलाकात। और खाते पीते रहो, ऐश करते रहो, चेहरे पे बड़े वाली स्माइल रखो, किसी का दिल मत दुखाना। बी नाइस टू एवरीवन यार। गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू सर्किलो।

Hey, maturity is when you can afford the food but cannot afford the calories, है ना? Hey, this is me, RJ Akash, आपके दिल की आवाज. मैं आपके साथ midnight lounge में जुड़ चुका हूँ. और अफोर्ड तो भाई देखो, हम टाइम भी कर सकते हैं, पर हर किसी का नहीं. अब फिलहाल मैंने आपका टाइम अफोर्ड कर लिया है, तो अब आप पूरी तरह से मेरे हुए. अफोर्ड की भाई मैं राशि बताया हूँ, क्या मुझे इसके लिए पे करना होगा. बहुत सुकून भरे गाने, बहुत प्यारी प्यारी बातें. तो जी, मैं अपना पिटारा लेकर आ गया हूँ, बातों का, गपशप का, और साथ में इन प्यारी प्यारी धुनों का, जिनको साथ में गुनगुनाने पर आप मजबूर हो जाएंगे. कहाँ से सुन रहे हैं जरूर बताइएगा. इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो जाएगा, रेडियो ऑलिव का पेज मिल जाएगा, फॉलो करके इनबॉक्स में हाई आरजे आकाश. और कौन सा गाना आज आप सुनने के मूड में हैं ये जरूर बताइएगा. देखते हैं कि मेरी प्लेलिस्ट में वो गाना कौन से नंबर पर चल सकता है. थोड़ी सी भी जगह बची होगी तो मैं आपके लिए तो जरूर जी सबसे पहले बनाऊंगा. तो आप जल्दी से मैसेज कीजिए और कहां से सुन रहे हैं ये जरूर बताइएगा मुझे, क्योंकि मुझे जानना है दुनिया के किस कोने तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है, कौन से दिल की धड़कन इन गानों की धुनों के साथ चल पा रही है. तो चलिए साथ में गुनगुनाते हैं और दिल से कहते हैं जियो बिंदास.

0: देखो हर कहानी का दर्द हार्ट ब्रेक नहीं होता, कभी कभी दर्द बस इतना सा होता है कि किसी ने आपको चूज नहीं किया।
1: रील वाली रियल कहानी,
2: रील वाली रियल कहानी।
0: हाय, दिस इज मी आरजे आकाश, आपके दिल की आवाज 106.3 रेडियो ऑलिव पर मिडनाइट लाउंज के सफर में। और आज एक रील में ना मैंने एक लाइन लिखी देखी, द कर्स ऑफ नॉट बीइंग चूजन। और सच कहूं ये सिर्फ प्यार की बात नहीं है जनाब, कभी स्कूल की टीम में सबसे लास्ट में चूज होना, कभी इंटरव्यू के बाद वी विल गेट बैक टू यू ये सुनना, या फिर कभी किसी फ्रेंडशिप ग्रुप में खुद को एक्स्ट्रा फील करना, या कभी किसी का फेवरेट ना बन पाना। और यही छोटी छोटी बातें ना दिल पर बड़े निशान छोड़ जाती है, और फिर धीरे धीरे इंसान हर जगह खुद से पूछने लग जाता है कि क्या मुझमें कुछ कमी है क्या, कि हर किसी को मुझसे दिक्कत है क्या। लेकिन जिंदगी का ना एक सच भी ये है, हर बार चूज ना होना रिजेक्ट होना नहीं होता, कभी कभी बस आपकी जगह कहीं और लिखी होती है। और जो लोग बार बार इग्नोर करने के बाद भी मुस्कुराकर आगे बढ़ते हैं ना, उनकी स्ट्रेंथ रील में नहीं दिखती, रियल लाइफ में दिखती है। तो आज का सवाल मेरा आपसे है, क्या आपकी लाइफ में कभी ऐसा मोमेंट आया है जब आप चूज नहीं हुए लेकिन बाद में समझ आया कि शायद वही आपके लिए बेस्ट था। आप जवाब दीजिए, इंस्टाग्राम पे रेडियो ऑलिव का पेज मिल जाएगा, इनबॉक्स में आपके मैसेज टेक्स्ट का इंतजार है। फिलहाल आपको जिस गाने का इंतजार है वो मैं चलाने जा रहा हूँ, जियो बिंदास।

0: अच्छा, आपकी कभी लाइफ में कोई ऐसा फिल्मी मूवमेंट आया जिसको आपने कभी किसी मूवी से रिलेट कर पाए हो?
1: चलो
0: आज आपको वापस से फ्लैशबैक में लेके चलते हैं। फिल्मी फ्लैशबैक में चलो।

Flashback. Hey, hi, this is me, RJ Akash, आपके दिल की आवाज़ 106.3 रेडियो ऑलिफ पर मिडनाइट लाउंज के सफर में हम आ चुके हैं जनाब जी फिल्मी फ्लैशबैक में। आज की फिल्मी फ्लैशबैक में ना बात करने वाले हैं उस मूवी की जिसे देखकर लगता है कि ऐसा भी कभी हो सकता है क्या, लेकिन जब आपकी लाइफ में वो मोमेंट आता है ना जनाब, तो आपके साथ भी वही शर्मा शर्माई, आज भी चाहे जेंजी जमाना है लेकिन स्टिल वो शर्मा शराई, वो लज्जा उफ खासकर अरेंज मैरिज में, मैं बात विवाह मूवी की कर रहा हूँ। लेकिन फिर शादी के बाद पता चलता है मूवी के बाद कुछ सीन्स अलग हैं जी रियलिटी के, इसलिए वो मूवी ना शादी के बाद तक की बनाई ही नहीं गई, सिर्फ शादी तक की दिखाई गई है। तुम खा लो ये शादी के स्टार्टिंग में चलता है और फिर कुछ साल बाद फ्रिज में जो बचा है ना वो खा लो, या फिर ज़्यादा दिक्कत है तो भाई लगा दो काम वाली, या फिर पहले गिफ्ट्स और सरप्राइजेस होते थे और बाद में मार्केट जा रहे हो तो प्लीज़ ये भी लेते आना। लेकिन मजाक अपनी जगह है, एक बात जो विवाह ने सिखाई थी और आज भी रियलिटी लगती है कि रिलेशनशिप सिर्फ रोमांस से नहीं होते जनाब, छोटी छोटी केयर, रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग से चलते हैं ना। तो विवाह मूवी की बात चल रही है तो आज उससे जुड़ा एक सवाल है मेरे पास आपके लिए, तो बताइए उस मूवी का एक ऐसा कौन सा डायलॉग है या कौन सा एक सीन है जो आपको लगता है कि आपकी लाइफ से बहुत कनेक्ट करता है, रिलेट करता है और आपको बहुत रिलेटेबल, बहुत रियलिटी के करीब लगता है। तो जल्दी से मैसेज कीजिए इंस्टाग्राम पे, हाई आरजे आकाश इंस्टाग्राम मिल जाएंगे, रेडियो ऑलिव के नाम से पेज है, इनबॉक्स में हाय आरजे आकाश और आपका मैसेज। फिलहाल आपके लिए एक प्यारा सा गाना जो आपको वापस अपनी कोई याद में ले जाएगा, कोई फिल्मी फ्लैशबैक के इन लम्हों में ले जाएगा, फिल्मी तरीके से, फिल्मी अंदाज में और फिल्मी धुन के साथ। जियो बिंदास।

Flashback. Hey, hi, this is me, RJ Akash, आपके दिल की आवाज 106.3 रेडियो ऑलिव पर मिडनाइट लाउंज के सफर में और वापस हम आ चुके हैं फिल्मी फ्लैशबैक में। बहुत प्यारा सा सवाल पूछा था और बहुत ही ज्यादा प्यारे प्यारे मैसेजेस बहुत प्यारे प्यारे कपल्स के आ रहे हैं मेरे को, और सबसे ज्यादा लिस्नर्स ने कहा है कि भाई विवाह का जो विवाह मूवी थी उसका सबसे रिलेटेबल पार्ट यही था कि सिंपल सी प्यारी सी कहानी, केयर और फैमिली बॉन्डिंग्स जो उस समय की दिखाई गई है वो एक्चुअली में अब होती हैं, बट लेकिन सिर्फ शादी के आसपास। मतलब लोग कहीं ना कहीं वो टाइम मिस कर रहे हैं क्योंकि आजकल न्यूक्लियर फैमिली ज्यादा हो चुकी है। और सच कहूं, शादी के बाद लोगों ना समझ आता है कि बड़े बड़े गिफ्ट से ज्यादा ना छोटी छोटी केयर्स बस मैटर करती है, राइट? फोन चार्ज पे लगा दोगे उसका, खाना खा लिया ये पूछ लिया, उसके बेचारे के बर्तन उठा के ले गए, यही काम रहता है ना जिंदगी में छोटी छोटी चीजें। और एक और फन फैक्ट बताता हूं मैं आपको इस मूवी का। मूवी में ना प्रेम बहुत शांत और पेशेंट दिखाया गया था, नहीं, लेकिन रियल लाइफ में अगर किसी को 10 मिनट का रिप्लाई ना मिले ना तो वो 3 मिस कॉल्स और 2 बार तो यही लिख देगा कहां हो ?" मैसेज भेज दिया जाता है। क्या आपकी भी वाइफ या हस्बैंड यानी कि जो आपके पार्टनर हैं वो भी इतने ज्यादा इंपेशेंट है और आप जल्दी इरिटेट हो जाते हैं? तो उन्हें कहा कीजिए ऑलिव सुना कीजिए, ऑलिव के थ्रू आरजे को मैसेज भेजिए, शायद आपके मैसेज से जल्दी आरजे की आवाज पहुंच जाएगी क्योंकि ऑलिव तो हर कोई कोने कोने से सुन रहा है ना। अभी यारो वापस कहीं जाएगा नहीं, सुनते रहिए रेडियो ऑलिव और दिल से कहते रहिए जियो बिंदास।

ये है मिडनाइट लाउंज कतर का बिगेस्ट जिम ब्रांड अब आ रहा है और भी पावरफुल अंदाज में फाल्कन फिटनेस हेल्थ क्लब प्रेजेंट्स इट्स सिक्स ब्रांच ग्रैंड इनॉग्रेशन एट बेनोम रान इस ग्रैंड ओपनिंग को और भी स्पेशल बनाएंगे सेलिब्रिटी गेस्ट शेन निगम अन्ना राजन सी आर सलीम और रोशन बशीर ज्वाइन कीजिए इस फ्राइडे जून 5th शाम 6 बजे फाल्कन फिटनेस बेनोम रान वन फैमिली वन मिशन अनस्टॉपेबल

0: देखो हर साल में ना हम बहुत लोगों से मिलते हैं, कुछ नाम याद रख पाते हैं और कुछ लोग दिल में जगह बनाने जाते हैं और कुछ बस आते हैं और चले जाते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। जैसे रेलवे स्टेशन, पता नहीं कितने सारे बीच में पड़ते हैं, आपको सभी नाम याद नहीं रहते, लेकिन हाँ अपने डेस्टिनेशन वाले का नाम याद रहता है, या फिर बीच में कोई एक स्टेशन जो बहुत प्यारा लग जाता है।
1: डिजिटल डायरी।
0: हाय, दिस इज मी आरजे आकाश, आपके दिल की आवाज मिड नाइट लाउंज में। और आज मैंने डिजिटल डायरी के पन्ने में एक चीज बहुत खूबसूरत सी पढ़ी। इस साल का वो एक सबसे प्यारा बंदा बताओ, या वो प्यारा इंसान बताओ, वो एक शख्स बताओ जिससे आपकी मुलाकात हुई अभी तक के इस साल के सफर में। मतलब उसने मुझसे सवाल पूछा पहली बार डिजिटल डायरी ने। तो देखो, जरूरी नहीं कि वो कोई सेलिब्रिटी हो या कोई बहुत पुराना दोस्त हो, हो सकता है कोई कुलीग हो या कोई नेबरहुड हो या कोई टीचर हो या फिर कोई ऐसा इंसान जो बस सही वक्त पर आपकी जिंदगी में आ गया हो जिस समय सच में आपको किसी की जरूरत थी। देखो कभी कभी ना लोग हमें कुछ बड़ी बड़ी चीजें नहीं देते, मतलब बहुत सारे गिफ्ट सरप्राइजेस नहीं दे पाते, बस एक चीज लेकिन अच्छी बात होती है, एक सच्ची दुआ या एक मुश्किल वक्त में साथ देना, बस साथ रहना उस समय, और वही उनके होने का सबसे खास एहसास बना देता है। आज रात अपनी डिजिटल डायरी खोलो और उस इंसान का नाम जरूर याद करो और मुझको बताओ। जल्दी से उस शख्स का नाम सोचो और इंस्टाग्राम पे जाओ, रेडियो ऑलिव का पेज मिल जाएगा, फॉलो करके इनबॉक्स में हाई आरजे आकाश और मुझे उनका नाम बताओ। अगर आप कहेंगे तो मैं आपके नाम के साथ उनका नाम लेकर और उनको आज तहे दिल से थैंक कहूंगा, क्योंकि उन्होंने आपको, मेरे इस खास दोस्त को, दिल से खुशी दी। तो फिलहाल मैं तो हूं ही आपके साथ, लेकिन उनको भी थोड़ा स्पेशल फील कराते हैं। आप टेक्स्ट कीजिए, मैं यहां से गाना प्ले करता हूँ। जियो बिंदास।

देखो, हर मोहब्बत का सबसे बड़ा सच ये नहीं होता कि हम किसी को कितना चाहते हैं, है ना। कभी कभी सच ये भी होता है कि सामने वाला भी तो उतना ही चाहना चाहिए या नहीं। Hey, hi, this is me, RJ Akash, आपके दिल की आवाज मिडनाइट लाउंज में। और आज की रात एक कहानी, एक मछली थी। उसे लगता था कि जैसे वो पानी के बिना तड़प जाती है, वैसे ही पानी भी उसके बिना बेचैन हो जाता होगा। वो हर रोज पानी से अपनी मोहब्बत को महसूस करती थी और उसे यकीन था कि पानी भी उसे उतना ही चाहता है। लेकिन एक दिन उसे समझ आया कि हर जरूरत मोहब्बत नहीं होती और हर लगाव दोनों तरफ बराबर हो ये भी जरूरी नहीं। कभी कभी ना हम किसी को इतनी अहमियत दे देते हैं कि हमें लगने लगता है कि जितना मैं सोचता हूँ उतना ही वो भी सोचता होगा। लेकिन जिंदगी का एक सबक यही है कि एक्सपेक्टेशंस अक्सर हम खुद लिखते हैं और खुद लगा लेते हैं और फिर उसके टूटने का दर्द सबसे ज़्यादा खुद को ही महसूस होता है। सामने वाले को तो पता भी नहीं चलता क्योंकि वो हमने खुद ही क्रिएट करी और खुद ही डिस्ट्रॉय हो गई। तो आज का सवाल मेरा एक और था आपसे, क्या आपकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कि जब आपने किसी रिश्ते या इंसान को बहुत इंपॉर्टेंस दी हो और फिर बाद में रियलिटी कुछ और निकली हो। जल्दी से इंस्टा पे मेरे साथ शेयर करो अपने दिल की बात, क्योंकि दोस्ती तो होता है जनाब जिसके साथ आप सब कुछ शेयर कर सकते हैं। रेडियो ऑलिव का पेज मिल जाएगा, फॉलो करके इनबॉक्स में हाय आरजे आकाश और अपने दिल की बात शेयर करो। अभी फिलहाल इस प्यारे से गाने के साथ अपने एहसासों को वापस से कबूल करो। सी यू बिंदास।

0: देखो, हर जीत ट्रॉफी नहीं होती और हर हार का मतलब खत्म होना भी नहीं होता।
1: यू शुड नो बिफोर यू स्लीप।
0: Hi, this is me, RJ Akash, आपकी दिल की आवाज 106.3 रेडियो ऑलिव पर मिडनाइट लाउंज के सफर में। बिफोर यू स्लीप, आज की रात एक बात अपने दिल को जरूर कहना, ये भी तो जीत हुई ना कि आपने अभी तक हार नहीं मानी। हो सकता है जो चाहता था वो अभी तक मिला ना हो सकता है कुछ सपने अभी भी वेटिंग लिस्ट में हो सकता है इस साल ने आपको थकाया हो, रुलाया हो या बार बार टेस्ट किया हो, लेकिन जरा सोचिए, आप आज भी यहाँ हैं, आप आज भी कोशिश ही कर रहे हैं और आज भी एक उम्मीद रखे हुए हैं। ये उम्मीद ही तो है। और कभी कभी ना सबसे बड़ी जीत रिजल्ट नहीं होती, कंटिन्यू करते रहना यही होता है सबसे बड़ी चीज। बाकी धीरे धीरे लर्नर है, हम सब लर्नर हैं। दुनिया सिर्फ उन लोगों को याद नहीं रखती जनाब जो जीत गए, कभी कभी उन्हें भी याद रखा जाता है जो मुश्किलों के बाद भी रुके नहीं, है ना। तो अगर आज की रात आपको लग रहा है कि मंजिल दूर है यार, मैं बस थक गया हूँ, तो बस इतना याद रखना, आप अभी थके हो, लड़ तो रहे हो ना, और ये खुद में एक सबसे बड़ी जीत होती है जनाब। आरो वापस कहीं जाएगा नहीं, सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, दिल से कहते रहिए जियो बिंदास।

0: दर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। मॉर्निंग
1: यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 FM।

जनाब रात की किताब का आखिरी पन्ना, लेकिन कहानी अभी भी चल रही है दिल में, दिमाग में और जुबान पे। तो किसको सुनाओगी? अरे मैं हूं ना यार, यहाँ से जाने के बाद भी आपके साथ जुड़ जाऊंगा, कनेक्ट कर जाऊंगा। जी हाँ, ही हाय, दिस इज मी आरजे आकाश, आपके दिल की आवाज मिडनाइट लाउंज में। और अब तक तो नाम तो याद हो ही गया होगा यार, नहीं? अगर नई नई दोस्ती हुई है, पहली बार ट्यून इन करा है, तब भी याद तो हो ही गया होगा। तो जनाब आज की रात फिलहाल महफिल यहीं तक की, लेकिन अब थोड़ा वन टू वन हो जाए, एक एक करके आपके मैसेजेस पढ़ते हैं। इंस्टाग्राम पे जाइए, रेडियो ऑलिव का पेज मिल जाएगा, फॉलो कर जाइए। इनबॉक्स में हाय आरजे आकाश, और मन में जो कुछ भरा है उसको अपने मन से निकाल कर खाली कर दीजिए, मेरे साथ शेयर कर दीजिए। डोंट वरी, मैं आपके मैसेज जरूर रीड करूंगा, और अगर आपको सलाह चाहिए तो जरूर दूंगा। ट्रस्ट नहीं होता करके देखो मैसेज, मेरा रिप्लाई पक्का आएगा। बस स्टार्टिंग में मैसेज के हाय आरजे आकाश जरूर लिख देना, ओके? कौन सा गाना आज की महफिल में पसंद आया ये भी जरूर बता देना। कोई बात दिल को छू गई हो तो थैंक यू भी कह देना। थैंक यू मतलब वो वाला थैंक यू नहीं, कोई प्यारे से गाने के साथ एक प्यारी सी लाइन गाकर सुना देना, बस वही हमारे लिए थैंक यू होता है, समझे? दोस्तों में नो थैंक्स, बस प्यारे प्यारे गाने एक दूसरे को सुनाते रहो, यही महफिल की रंगत है। चलता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मन में भर के नहीं मन भर के जिए। और हाँ, ये सफर जिंदगी का हो या गाड़ी का, खूबसूरत सा रहे, इसलिए मैं बहुत प्यारे से गाने लगा के जा रहा हूँ। दिल से कहते रहिए, सी यू, बिंदास, गुड नाइट, बाय बाय।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

0: भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो बिंदास
1: आरजे सिमरन के साथ
2: रेडियो ओलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी।

अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

are listening to Radio Olive 106.3 FM.

Radio Olive, your happiness frequency.

You are listening to Radio Olive 106.3 FM.